आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8200

0: जी हाँ, कमल सीढ़ी। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हृदय इलाज के लिए 5 बच्चों का जत्था हुआ अहमदाबाद रवाना। माई भारत ऐप को लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। 324 उपद्रवियों पर इनाम घोषित और 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अलग अलग हादसों में 1 महिला सहित 2 लोगों की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सदर अस्पताल गोपालगंज में बेटी जन्मोत्सव का हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कन्या जन्म को उत्सव के रूप में मनाना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना तथा लिंग समानता का संदेश देना था। कार्यक्रम में सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गाँव मौजूद रहे और भव्य तरीके से कार्यक्रम के दौरान बेटी जन्म देने वाली माताओं का अस्पताल परिसर में स्वागत किया गया। इस दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कहा कि बेटी के जन्म का सम्मान करना ही एक सशक्त और समता मूलक समाज की पहचान है। साथ ही सरकार के द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे तथा प्रत्येक बेटी के जन्म को गर्व और उत्सव के रूप में भी मनाने की प्रेरणा देंगे। आज जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी समीर सौरव और उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा जिला युवा अधिकारी शशांक मित्तल की उपस्थिति में माई भारत के युवाओं एवं स्वयं सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत माई भारत के द्वारा चयनित विभिन्न राज्यों के युवाओं ने सीमावर्ती गाँवों में किए गए अपने कार्यों एवं अनुभवों को प्रधानमंत्री तथा देश भर के अन्य युवाओं के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने भी युवाओं से संवाद स्थापित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों, युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित 5 बच्चों को बेहतर और निःशुल्क इलाज के लिए अहमदाबाद स्थित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल भेजा गया। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया तथा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर पटना के लिए रवाना किया। वहाँ से बच्चों को हवाई मार्ग से अहमदाबाद भेजा जाएगा। जिले में अब तक 149 बच्चों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 80 बच्चों की सफल हृदय सर्जरी भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिले में 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन और पथराव के मामलों में पुलिस ने अब बेहद कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। कानून से बचने के लिए फरार चल रहे 324 उपद्रवियों जिनकी पहचान उनकी तस्वीर जारी की गई है और ऐसे आरोपियों पर 5,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। इनमें से अब कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर भी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है उनमें शाह आलम, जयराम और अधिवक्ता मनोज कुमार का नाम शामिल है। साथ ही अन्य फरार उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी गई है। जिले के 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढड़वलिया गांव का बताया जा रहा है, जहां नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक नायका टोला कुचायकोट निवासी धर्मेंद्र राम, उम्र 39 वर्ष बताया जा रहा है, जो ललन राम का पुत्र था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के डुमरौना गांव में केले के खेत की घेराबंदी के दौरान करंट के चपेट में आने से एक मैट्रिक की छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा थाना क्षेत्र के बलुआ टोला में भी खेत से लौटने के दौरान एक बुजुर्ग किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सड़क के किनारे इनके शव को जब लोगों ने देखा तो परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी माझा पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। परिजन इसमें हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बरौली थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त अनिल उर्फ अरबाज मियां को गिरफ्तार कर लिया। यह कोटवा गांव के नवाब मियां का पुत्र बताया जा रहा है। आज इसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आज यातायात थाना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान थानाध्यक्ष की उपस्थिति में थाना के पंजी और अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। उनके समुचित संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही नगर थाना एवं यातायात थाना क्षेत्र में जाम की समस्या की भी समीक्षा करते हुए यातायात को सुचारू रखने और पार्किंग पर कार्रवाई तथा नियमित वाहन जाँच और प्रमुख चौक चौराहों पर प्रभावी पुलिस प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया। सभिया एयरफील्ड के शीघ्र परिचालन सुनिश्चित करने को लेकर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सभिया एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में तीव्र गति से कार्य प्रारंभ करने का आग्रह किया है। कटिया थाना की पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू किया है। इसी क्रम में 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किया है। एक आरोपी राम प्रवेश राम उर्फ राम प्रवेश प्रसाद है, पिता मोहन प्रसाद, और दूसरा राजन कुमार उर्फ राजन प्रसाद, पिता राम प्रवेश राम। ये दोनों बनकटा बाजार थाना चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी है। इन पर कटिया में एक मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस ने दोनों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी विद्यालाल राम को गिरफ्तार कर लिया। यह नगर थाना के सरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद पुलिस ने भी पहाड़पुर सड़क के पास छापेमारी करते हुए 95 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रिंस राय, यह मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। यह एक चरपहिया गाड़ी में शराब लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हृदय इलाज के लिए 5 बच्चों का जत्था हुआ अहमदाबाद रवाना। माई भारत ऐप को लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। 324 उपद्रवियों पर इनाम घोषित और 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अलग अलग हादसों में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का

0: दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कइले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714 86164।
8: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम।

0: अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूल स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
14: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर,

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94552।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
9: और 9097-6160-02।

0: है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी। गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, अतिक्रमण मुक्त कराने की चल रही है कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: पटना जिले की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। मतदान 30 जुलाई को होगा जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आइए जानते हैं इस सीट के चुनावी परिदृश्य के बारे में।
2: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं जनसुराज इस चुनाव के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बनाने में जुटा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 379,616 मतदाता हैं। इनमें 2,60,000 पुरुष, 179,533 महिलाएं तथा 23 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इस उपचुनाव में 4,998 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 मतदान बूथ बनाए हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें तो ट्रैफिक जाम, जल जमाव, सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग तथा अन्य शहरी आधारभूत सुविधाएं मतदाताओं के बीच प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इस मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
3: जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के दौरान जल उठाने के लिए श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। सुल्तानगंज से मुंगेर, बांका होते हुए झारखंड के देवघर तक चलने वाले इस 96 किलोमीटर कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। मेले में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ नेपाल, भूटान और अन्य देशों से भी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुल्तानगंज से विनोद कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज मुंगेर दौरे का भी कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री तारापुर और असरगंज में कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे

आंतरिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व के स्वयं के स्रोत के आदर्श नियम भी जारी किए। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण TRE4 के तहत नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना 1 से 2 दिनों के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। TRE4 के तहत 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के कुछ पद भी शामिल होंगे। इस बीच BPSC ने सोशल मीडिया पर वायरल TRE4 की विज्ञप्ति को फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने गैर सरकारी स्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ विधायक की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में 4 साल कारावास की सजा सुनाई थी। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के बैंक लॉकर की तलाशी में लगभग 64,79,000 रूपये मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। ब्यूरो ने बरामद आभूषणों और अन्य संपत्तियों का विवरण अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आधुनिक कला तिरखा नई दिल्ली और बिहार संग्रहालय पटना ने कला और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों संस्थानों के बीच बिहार संग्रहालय में आयोजित होने वाली संयुक्त कला प्रदर्शनी शोध और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला तिरखा के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने नई दिल्ली में इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने पटना के महावीर मंदिर तख्त श्री हरि मंदिर साहिब और गया के विष्णुपद मंदिर सहित राज्य की 11 महत्वपूर्ण धरोहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP को सौंपने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत इन स्थलों पर BSAP जवानों की तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ धरोहरों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है और सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हालिया तनाव को देखते हुए अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिला पदाधिकारी विनोद तुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती गांव का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल SSP और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई है तथा आने जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुईथासा स्थित राम जानकी पुल के पास से पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक और उसे शरण देने के आरोप में एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेसी खजूरी मार्ग स्थित कचरा प्रबंधन केंद्र के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया की एक अदालत ने 2 बच्चों की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के रतनपुर स्थित बालिका गृह से 5 बालिकाओं के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस लापता बालिकाओं की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। बिहार सरकार ने कहा, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति रिहा किए जाएंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकार ने लोकसभा में पेश किया सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। दैनिक भास्कर की खबर है, बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन होगा, परमाणु बम और ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होगा, 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रभात खबर ने लिखा है, 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, पंकज त्रिपाठी को मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में मिलेगा आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन पुरस्कार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार के सुधा को बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मुख्यमंत्री। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों को कोषागार के जरिए सहायक अनुदान देने की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी। गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा, बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रही है कार्रवाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: हेलो, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
13: हेलो
14: हेलो
13: जी, गुड मॉर्निंग मैम।
14: गुड मॉर्निंग
13: जी, कैसे हैं?
14: मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
13: जी, बोल रहे थे गाना सुनना है मैम।
14: जी, कौन सा गाना सुनना है?
13: वो एक है ना, ओढ़नी के कोर से तो पूछा अपन लोर गावे आई वे गोरी।
14: और गाना किसी को सुनाना भी है?
13: जी सुनाना है।
14: बता दीजिए।
13: जी मेरे भाई लोग का है और यहाँ पे जितने वर्कर सब है उन सबको और जितने रिमझिम में है उन सब लोगो को।
14: ओके, तो चलिए मैं आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ 90.4 FM।
13: ठीक है मैम, थैंक यू।
14: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। नाश्ता तो हो गया?
1: हाँ, मेरा तो नाश्ता हो गया है। आपका हो गया?
0: सनी मैम बोल रही है?
1: नहीं, आरती बोल रहे हैं। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: ये बंधन दिलों के बंधन है।
1: और गाना किसी को डेडिकेट है?
0: आप रेडियो रिमझिम सुने अपने साथ।
1: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
5: नमस्कार। कैसे हैं?
6: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
5: ठीक है। भाई आज लेट हो गया।
6: मेरे चार्ज नहीं था ना, इसलिए।
5: रिचार्ज नहीं था, बारिश में आने में लेट हो गई।
6: नहीं नहीं, मुझे आने में लेट नहीं हुआ, रिचार्ज नहीं था। सर से बोल के अभी रिचार्ज कराया।
5: हाँ हाँ, अभी बोल रहा था इनकमिंग। सर ठीक है?
6: हाँ हाँ सब ठीक
5: है। गाना एक सुने दो।
6: आज कौन सा आज गाना सुने?
5: आज तिल की राज के गाना मान हानि के।
6: हाँ
5: तो
6: गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: प्रणाम सर।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
0: जी, हम बथुआ रोड कैमरा बाजार से बोले थे। हेलो।
1: हाँ, कैसे हैं आप?
0: नया ब्यूटी पार्लर से।
1: अच्छा,
0: हमारे वो गाना फरमाइशी बा, तनी बजा दे।
1: बता दी कौन सा गाना?
0: अभी ऐसे 15 अगस्त आ गया बा, तो राष्ट्रीय गाना बजा दे कर्मा फिल्म के, जौन हरि करम अपना करेंगे।
1: हाँ।
0: जी, और सब कहीं अपन समाचार?
1: हमारे तो ठीक बाबे। और गाना क्योंकि डेडिकेट भी बा
0: रेडियो रंजन तभी सभी लोगों के लिए।
1: अच्छा,
0: अपने सेमरा बाजार के सभी आई लोग है।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 एफएम।
0: जी सर।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
11: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
12: जी नमस्ते मैम।
13: नमस्ते,
12: जानना सुनना है।
13: जी बता दीजिए कौन सा
12: गाना?
13: हेलो
12: हेलो।
13: हाँ,
12: खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, गाना नहीं है क्या किसी को? यही गाना सुना है।
13: और गाना किसी को डेडिकेट है?
12: और गाना रेडियो रेंजन सुनने वाले के लिस्नर हो और आपको भी।
13: आप,
12: मेरा नाम निरंजन कुमार है।
13: हाँ।
12: आपका नाम है?
13: आरती।
12: आरती खाली?
13: हाँ।
12: जी ठीक है। और समाचार?
13: समाचार सब ठीक है, आप अपना बताइए।
12: मेरा भी ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया है।
13: अच्छा, धूप लग गया है क्या?
12: हाँ, धूप में गन्ना का जूस पी लिए थे उसके बाद।
13: अच्छा,
12: इसलिए लग रहा है।
13: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ, जिंतापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आपका आवाज आज लग रहा है कि सोनी जैसा लग रहा है, सोनी मैडम जैसा।
1: अच्छा सोनी मैम, तो योर वॉइस योर चॉइस का शो कर रही है ना?
0: आवाज आपका आज वही लग रहा है सोनी जैसा, सोनी मैम जैसा। आज आवाज आपका पहचान लिया।
1: लेकिन हम तो भारतीय है ना?
0: भारतीय।
1: हाँ
0: और बताइए मैडम, बारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है।
0: अच्छा धूप निकल रहा है?
1: हल्का हल्का धूप निकल रहा है।
0: आज हम लोग का गाना सुनवाइएगा खेसारी लाल को, बोलबम का वाला गाना है, रोड में कंवरियन के भीड़ लगल बा, हमें चलैया पे दिया ड्राइवर हो।
1: अच्छा
0: यही वाला, अभी सावन का चल रहा है ना, इसलिए हम लोग सोचे कि आज बोलबम का गाना फरमाइश करें।
1: बिल्कुल चलिए फिर, गाना किसी को डेडिकेट है?
0: गाना तो डेडिकेट मेरे गुरुदेव भाई है और मेरे अंकल जी है, ललन अंकल जी सिवान जिला का। और सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ना, यही तो गलती हो गया मेरे।
1: अरे नहीं ऐसा नहीं है, किसी को डेडिकेट कीजिए, सुनना ही है। मैं तो वैसे तो मैं सुन ही लेती हूँ।
0: अच्छा जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं श्रोताओं, सबको श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे लड़की है, वो भी सब ये गाना का फरमाइश है।
1: चलिए तब तो और बढ़िया है।
0: मेरी लड़की बोली कि नहीं पापा, आज गाना वही खेसारी लाल का फरमाइश कीजिएगा। फोन करके बोली थी, हम बोले कि नंबर दे देते हैं बेटा, बात कर लेना। और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हेलो, आप सब बताइए, आप सब ठीक है ना?
0: हाँ बढ़िया है जी, आप लोग का आशीर्वाद चल रहा है, बस हम लोग ऐसे ही फोन करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे बस,
1: और हम सब आप सबकी फरमाइश को पूरा करते रहेंगे।
0: फरमाइश क्या चीज का?
1: गाने की फरमाइश को पूरा ऐसे ही करते रहेंगे,
0: ऐसे ही पूरा करते रहेंगे गाने का फरमाइश। जैसे हम लोग गाना फरमाइश करते हैं तो रेडियो स्टेशन में भी बजता है?
1: हाँ बजता है यहाँ भी।
0: अच्छा, और उसी को बजाया जाता है वो रेडियो, जो जितना सुनने वाला है वो रेडियो सुनता है?
1: रेडियो पे जब बजता है तो यहाँ भी रेडियो रखा हुआ है, हम लोग भी सुनते हैं और सारे लिसनर वो तो अपना सुनते ही होंगे।
0: अच्छा रेडियो स्टेशन रखा हुआ है?
1: हाँ,
0: बजता है। अच्छा
1: अभी सोनी जी का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी बज रहा है वो भी।
0: सोनी जी का वो कौन सा है, इसमें फरमाइश था
1: योर वॉइस योर चॉइस का? हाँ
0: हेलो माय चॉइस का,
1: ये तो हेलो माय चॉइस है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो योर वॉइस योर चॉइस है।
0: आप खाली रिकॉर्डिंग करते हैं और एक मोनार्मा जी है वो?
1: हाँ
0: चलिए ठीक है मैडम, ठीक है
1: ओके, फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
10: Jab phone ding ding bajte hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
11: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhvar aur shukrawar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 8029-94-911। Ji haan 8029-94-911। To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
12: हेलो रिमझिम रेडियो गोपालगंज जी।
13: हाँ जी
12: सोनी बेटा, सत श्री अकाल भाई।
13: सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: धन्यवाद भाई, मैं भाई पिंड मौड़कोट दे डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मटू बोलदा बेटा।
13: ओके, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
12: बेटा एक पुरानी फिल्म है, देश प्रेमी फिल्म है भाई
13: जी। गाना है कौन सा है बता दीजिए।
12: बताना बेटा, गुनगुना कर बताऊं?
13: गुनगुना दीजिए।
12: हाँ सुनाना बेटा, हैगा भाई फिल्म, हैगा भाई गीत है, मेरे याद आगे भूल गया सी। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, ये गीत है भाई।
13: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
12: हाँ बेटा, मेरे मान योग बड़े भाई है जी, देवेंद्र सिंह तग्गड़ साहब, अमरजीत सिंह बाला साहब प्रिंसी रिटायर हो गया भाई, सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो ये डॉक्टर रिटायर हो गया भाई, मलकीत सिंह घड़ीसाज, भाई स्वामी धर्मपाल जी, परमजीत सिंह बागा पुराना बेटा। आपको सत श्री अकाल बुलाऊंगे।
13: सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल किया।
12: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल।

0: नमस्ते भारतीया मैडम
1: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मैं एक गाना की फरमाइश करना चाहता हूँ।
1: बता दीजिए।
0: गाना मुझे चाहिए है कितनी बेचैन हो के तुमसे मिला। फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम आपको पता होगा।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: भारतीया मैडम, ये गाना आपको डेडिकेट करना है।
1: अच्छा, नाम वैसे क्या था आपका?
0: मेरा नाम है मोहम्मद वकास, स्कॉटलैंड ग्लासगो से बोल रहा हूँ। और भारतीया मैडम, मौसम कैसा है इंडिया में?
1: मौसम इंडिया का अभी तो गर्मी पड़ रही है और धूप भी तेज ही निकल रहा है।
0: ठीक है, इधर स्कॉटलैंड में भी अच्छा मौसम है, इधर धूप निकली है।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया
0: है। इधर मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो आपको इंडिया में मजा आता होगा?
1: इंडिया में बहुत मजा आता है।
0: अच्छी बात है, तो आपको इंडिया पसंद है?
1: मुझे तो बहुत पसंद है।
0: ठीक है, जाऊंगा इंडिया मुलाकात करने के लिए।
1: बिल्कुल स्वागत है आपका इंडिया।
0: ठीक है, आऊंगा इंडिया, एक बार ट्राई करूंगा। वीजा लग जाएगा तो आज मैं, वीजा नहीं लगेगा तो नहीं
1: आ। गाना प्ले कर रहे हैं।
0: हाँ जी, तो गाना जरूर प्ले करना है, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ भारतीया मैडम। और मुझे माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद मेरा गाना लगाने के लिए। तो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो प्रिंसिपल में कॉल करने के लिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 91.4 एफएम में।
10: जी मैम नमस्ते।
9: नमस्ते,
10: कैसी हैं आप?
9: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ।
9: क्या हो रहा है अभी?
10: अभी तो कुछ नहीं, खाना खा रहा था, कॉल लगा रहा था।
9: अच्छा, चलिए भोजन हो गया?
10: नहीं अभी आधा हुआ है, आधा बाकी है, तब तक फोन ही लग गया।
9: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
10: गाना कोई आप अपने पसंद से सुना दीजिएगा।
9: अच्छा, मेरी पसंद से सुनिएगा।
10: हाँ जी मैम।
9: सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
10: हाँ, सभी रेडियो रेंजिंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपको और आपकी पूरी टीम को।
9: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 91.4 एफएम।
10: जी मैम, थैंक यू,
9: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी रमजान
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: वो आज कौन सा गाना सुनने हैं?
0: आज सुनवा दीजिए, गद्दार मूवी है 30 का। उसमें गाना ये वाला है, तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी आपको जितने श्रोता सभी को, हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग का साथ सुनेंगे।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी नमस्ते।
4: नमस्ते,
5: मैं ज्योति साहू मक्सूर से बोल रही हूँ।
4: कैसी है?

0: अभी बोल लगा रहे हैं बहुत देर से, लेकिन उनका लग नहीं रहा है अभी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, उनका कॉल लग नहीं रहा है अभी, बोल रहे थे हमारा नहीं लगा है, आपका लगा है? नहीं मैन जी, मेरा भी लगा अभी, तो बजा दीजिए मैडम ये वाला गाना हमारा।
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है मैडम जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या चल रहा है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है, ओके। सारी लाल का गाना नहीं है, पुराना वाला बाबा धाम वाला
1: नया जो निकला है वो?
0: नहीं नहीं, नया वाला भी ठीक है, वो पुराना वो नहीं है। चल रहा भीड़ लगा हुआ कमरिया, वही गाना चाहिए।
1: चलिए फिर, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: ठीक है, सुरेश यादव है, दुनिया है, रुबिया उसकी माँ, यही लोग करवा दिया है।
1: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4। नमस्ते।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
9: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
11: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
16: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
15: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन पर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
16: जी क्या हाल चाल है आपका?
15: आज दीदी दुकान पर बैठे हैं और आपका रेडियो रंजन सुन रहे हैं।
16: अच्छा जी, तो आज कौन से गाने की फरमाइश?
15: जी मैडम जी, सिस्टर का नाम तो याद नहीं, गाने के बोल है काले लिबास में ऐसा लगे जैसे गोरा बदन निकल रहा है कोयले के कान से।
16: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
15: जी सबसे पहले आपको है, अपने गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा है, जितेंद्र धाकड़ जी को, इनको सबको गाना डेडिकेट है ये।
16: जी चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
15: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक। नाश्ता हो गया आपका?
0: नाश्ता करके आते हैं। बता दीजिए कौन सा?
1: गलीनी आज चांदनी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको भी।
0: ओके,
1: आप कौन बात कर रही है? भारती मैम या सोनी?
0: भारती,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।
0: चलिए तब तो अच्छा है, ठीक है, आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा।
1: कब तक बज जाएगा ये सॉन्ग मैम?
0: आज नहीं तो कल बज जाएगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
9: कैसे हैं?
8: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बता दीजिए कौन सा? और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो
1: जी,
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
1: क्या गुप्ता
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: अरे गर्मी से बहुत हालत खराब जो हो रहा है।
0: गर्मी तो बढ़ गया है,
1: धूप बहुत निकल रहा है, बहुत
0: धूप भी वैसे ही निकल रहा है, गर्मी भी वैसे ही बढ़ा हुआ है।
1: ये ठंडी का मौसम सही रहता है
0: हमको तो भाई, ठंडी अच्छा लगता है।
1: ठंडी तो हमको भी अच्छा लगता है मैडम,
0: क्योंकि ठंडी में अपना स्वेटर पहनिए और निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
1: हीटर लगा करके बैठे रहिए के दिन में ना।
0: हीटर है, आग है, सब तो है ही है और गर्मी के दिनों में तो पूरा हाल होता है।
1: और बताइए, ये सोनी सिस्टर कैसे हैं?
0: सोनी जी भी अच्छी हैं।
1: अच्छा, आजकल बात भी नहीं हो रहा है। आज रितेश पांडे का गाना सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: कहाँ के लिए यही वाला मैडम गाना सुनना है, ठीक है? हाँ,
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट है,
0: ओके,
1: और उसके बाद जितना रेडी रेंजन सुनने वाला है सब।
0: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 एफएम।
1: ठीक है, ओके, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 8009994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
5: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे आज काफ़ी लेट हो गए हैं और किसी कारण एक कार्य ऐसा है उसको ना करे तो इसमें एंट्री नहीं मिलती है, उसी कारण लेट हो गए हैं आप सभी के बीच उपस्थित होने में। तो कार्यक्रम डायरेक्ट चलेगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाई जा सके। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कॉल ना करें, आप टेक्स्ट मैसेज के कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेज ही करें ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। आप कितना हो कॉल कर लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी क्योंकि यह कार्यक्रम जो है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही गाने सुनाए जाते हैं, इसके लिए बने हैं। तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज करें, हम बिल्कुल सुनाएंगे। कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी करें टेक्स्ट मैसेज। पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और बहुत सारे मैसेज हमारे पास काफ़ी समय पहले पहुंचे हुए, तो अभी फ़िलहाल के जो मैसेज आए हुए हैं उन्हें मैसेजों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जो दो तीन मिनट पहले आए हुए हैं। बाकी जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं तो अपने मैसेज को रिपीट करें ताकि हमें लगे कि आप सुन रहे हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी कर पाएं। यहाँ पे पहला मैसेज हम शामिल करते हैं, लिखा गया है कि मंकेश साहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, सर हम भी जुड़ गए हैं और दिलवाले मूवी से गाना सुनना है, जीता था जिसके लिए मरता था। तो बिल्कुल आपके मैसेज को हमने शामिल कर दिया और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जो भी श्रोतागण जो पहले मैसेज किए हुए काफ़ी समय पहले, वो अपने मैसेज को रिपीट करें ताकि हमें ये एहसास हो कि आप भी सुन रहे हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी कर पाएं। तो फिलहाल गाने को एंजॉय करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

0: कमल के गाने सुन रहे हैं आप सब रेडियो रेम छेम 94.4 FM पे शो चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और जो भी श्रोतागण अभी जो सुन रहे हैं और काफ़ी समय पहले मैसेज किए हुए, आज कार्यक्रम थोड़े लेट से चालू हुए हैं, तो आप उस मैसेज को रिपीट कर दे ताकि हमें एहसास हो कि आप अपने मैसेज को लेकर इंतज़ार में लगे हैं। और गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी कर पाएँ, थोड़ा सा केवल हाय लिख दें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेज रिपीट हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। और आगे पहला तो गाना हम सभी सुन रहे हैं, अगला गाना सुनने का बारी आ चुका है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं कमलेश जी। और कहते हैं कि हाय, मैं कमलेश विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपकी सॉन्ग प्ले करेंगे। आगे मैसेज कुछ पहुंचा, लिखा गया है कि हेलो सर, नमस्कार, राधे राधे सर जी, सर मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिए। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, सावन की आगाज शुरू हो गई तो भोले शंकर आप पे कृपा बनाए रखे, साथ में एक सॉन्ग सुना दे, फिल्म है सावन को आने दो, यशपाल सिंह का और स्वर है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। और इस मैसेज को करते हैं दीपक एंड जेलर जी, याद याद याद बस याद रह जाती है, बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू जी क्या हाल है, हम लखन पांडे कल, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, हाँ, लेकिन आप भजन की गाने की फरमाइश करते हैं तो भजन नाथ शरीफ और कव्वाली आप लोग ना करें, क्योंकि ये लंबे समय के होते हैं और ये कार्यक्रम बना हुआ है बहुत कम समय का। एक ही गाने सुनाते सुनाते हम सभी कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे, तो भी भजन और नाथ शरीफ जो होते हैं थोड़े लंबे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के होते हैं, तो आप लोग साधारणतः गाने के फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, अभी टाइपिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहें। आगे बढ़ते हैं हम और अगली गाने की फरमाइश पूरी करते हैं कमलेश जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।
1: बात

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या

0: क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
2: आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़कर अपनी फरमाइश कर सकते हैं और फरमाइश सुन सकते हैं। यहाँ पे कार्यक्रम में एक छोटा सा आप सभी के बीच सेहत सही लाभ कोई के अंतर्गत सुझाव साझा करेंगे। और आज हम सभी जानेंगे टाइफाइड के बारे में। और टाइफाइड एक संक्रामक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। स्वच्छता की कमी वाले क्षेत्रों में यह अधिक पाया जाता है। कारण, इसके कारण है दूषित पानी पीना, दूषित या खुला भोजन खाना, संक्रमित व्यक्ति द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना, शौचालय के बाद हाथ अच्छी तरह से ना धोना। और इनके लक्षण है, टाइफाइड के लक्षण संक्रामक के 6-30 दिन के बाद दिखाई दे सकते हैं और लगातार तेज बुखार 103-104 डिग्री तक हो सकते हैं। सिर दर्द, कमजोरी और थकान महसूस कर सकते हैं। भूख कम लगना, पेट दर्द, कब्ज या दस्त आना, मतली जैसा मिजाज होना, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, कुछ मरीजों में छाती या पेट पर छोटे गुलाबी रंग के दाने भी निकल आते हैं। ये सारे इनके लक्षण हैं। इनकी जांच है रक्त जांच और सबसे विश्वसनीय है बिडाल टेस्ट। कुछ मामलों में उपयोग किया जाता है CBC तथा अन्य आवश्यक रक्त जांच भी कराई जाती है। डॉक्टर आवश्यकता अनुसार अन्य जांच भी करा सकते हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। जो भी डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाए उसका पालन करना है, ताकि डॉक्टर हम लोग के स्वास्थ्य के लिए ही कुछ सलाह देते हैं और वो स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर हो तो। आगे इनका उपचार है, डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा कोर्स लें, पर्याप्त आराम करें, खूब पानी, ORS, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ लें, हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार पैरासीटामोल ली जा सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद ना करें। डॉक्टर जितना दिन दवा चलाए उतना दिन आप दवा का सेवन करें। बचाव इनके हो सकते हैं, हमेशा उबला या शुद्ध पानी पिए, भोजन को ढक कर रखें, बाहर का खुला और अस्वच्छ भोजन ना खाएं, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाएं, आवश्यकता होने पर टाइफाइड का टीका भी लगवाएं। इन सारी गाइडलाइन को आप फॉलो करें। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर इलाज ना मिले तो। निम्न समस्याएं हो सकती है, जैसे आँत में छेद, आँत में रक्त स्राव, गंभीर संक्रमण, अत्यधिक कमजोरी और निर्जलीकरण, ये सारे हो सकते हैं यदि हम अनदेखा करें तो। ऐसे लक्षण अगर हमारे शरीर में या हमारे पड़ोसी के यहाँ या किसी भी व्यक्ति को आपको दिखे तो उसको सलाह देना है कि इसका इलाज हम कराएं, इसको नज़रअंदाज ना करें। ऐसी जानकारी हर रोज़ आप सभी को दी जाएगी रेडियो रिमझिम के माध्यम से। छोटी छोटी जानकारी हर कार्यक्रम में दी जा रही है और दी जाती है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करें। फिलहाल कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे कुछ मैसेज है और लिखा गया है कि सुनो भाई, मेरा गाना अभी तक नहीं सुना है आप क्या? तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करने की कोशिश में हैं। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी, तो अभी आपकी मैसेज दिखी तो आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं उसका नाम बता दें। आप लिंक भेजे हुए, हम कई बार बोल चुके हैं कि आप लोग लिंक ना भेजकर यदि लिंक भेजते हैं तो ठीक है, उसमें नाम भी बता दें कि कौन से गाने सुनने हैं, क्योंकि पहले की जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं चेंज हो चुकी है। अब लिंक के माध्यम से गाने को प्ले करने में थोड़े हमें दिक्कत होती है, तो आप लोग नाम बता देते हैं तो बेहतर रहता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो सर जी, गाने का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे।

और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हैं अनूप यादव जी, और कहते हैं कि एक वीक 5 दिन हो गया। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले कर देंगे, और कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल कर ले। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गाना बजाने के लिए, थैंक यू सर जी, तो आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है 9:07 PM पे है, सोनू सर बजा दीजिए। तो बिल्कुल आपके गाने भी बजाएंगे, और थोड़ा सा सब्र कर ले। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, तो बिल्कुल एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। जो भी मैसेज हमारे पास से रिपीट हो रहे हैं उन सभी मैसेजों को शामिल करने का प्रयास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश हम अनूप यादव जी की प्ले करते हैं, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझम 90.4 FM पे। गाने का बोल देते हैं, तेरी यादों के चादर ओढ़ के। रेडियो रमझम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, जिसके कारण एक गाने आप सभी के बीच हम अपने पसंद से छोड़ रहे हैं। तब तक आप इंजॉय करते हैं और हम देखते हैं और ठीक करके आते हैं। तो जो भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो उस मैसेज को शामिल करते हुए अगले गाने की फरमाइश भी प्ले करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आप इंजॉय करते हैं इस गाने के साथ रेडियो रमझम 90.4 FM पे।

कमल के गाने सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एम जी 90.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और आगे देखें तो यहाँ पे समय जो है 10:14 हो रहे हैं हमारी स्टूडियो घड़ी में। आगे कई मैसेज हैं हमारे पास, लेकिन क्या ही करें, समय जो है समाप्ति का निर्धारित है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। और यहाँ पे आगे हमारे श्रोतागण हैं एक जो हमें लग रहा है कि नाराज़ चल रहे हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया कि वेरी नाइस सॉन्ग, मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से और स्वागत है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि टाइफाइड के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर, कोई कोई बीमारी के बारे में जानकारी देते रहिए, अच्छा है। प्रोग्राम को सुनने के लिए सभी से इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम हर रोज़ चलता है मंडे टू फ्राइडे, और 9:20 से या 15 से 20 के बीच और 10:15 से 20 के बीच कार्यक्रम चलता है, तो आप जुड़ सकते हैं और फरमाइश सुन सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि भैया मेरा सॉन्ग क्या हुआ, तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा, आगे हम चलते हैं। और आगे हमारे श्रोतागण जो नाराज़ चल रहे हैं उनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और इनकी नाराज़गी ख़त्म करते हैं। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, ओ साहिबा ओ साहिबा। इस मैसेज को करने वाले हैं रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए आप एंजॉय करें अपने गानों के साथ और हम भी करेंगे और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप सब सुनते रहें, एंजॉय करते रहें। नमस्कार।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापी।

0: जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा, उसके घर में जाऊंगा। सच कहता हूँ राम कसम, मैं जोरू उसे

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आप सभी जुड़ रहे हैं। तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ और एंजॉय कीजिए सभी के साथ इस गाने को।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत इश्क कमीना, और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, और यहाँ मैसेज करने वाले हैं दिलीप शर्मा पठार टोला से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ, गुड आफ्टरनून मैम। दीपक चौहान सूरत गुजरात से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं, याद ऐसी करना जिस की हद ना हो, विश्वास इतना करना कभी शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, और दोस्ती ऐसी करना जिसमें नफरत ना हो। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं ओम साई टेलर हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हाय नैयम अंसारी जमतारा से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। जी नमस्ते,
1: हम थाना से बोल रहे हैं,
0: जी बहुत

0: और स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: आज गाना सुनेगा?
0: बता दी कौन सा गाना सुनेगा?
1: चाहे जिया जरौला ए दुल्हा गंगा पार के।
0: और गाना क्यों के सुना एक बार?
1: जितना लोग
0: चलिए और गाना प्ले कर दे लवानी।
1: नमस्ते।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166-64498 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं, भारती जी आप कहाँ हैं? तो मैं यहीं हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है कि भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, आप कैसी हैं? हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं, दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, प्यार में सबसे बड़ा खुशनसीबी वह जो झुक जाए, और सबसे बड़ा बदनसीबी वह जो अकड़ जाए। तो बात तो सही है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, हमारा भी फरमाइश है, गाने का लिंक भेज दिया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और दीनानाथ यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, कल हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किए थे, आज प्ले कर दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, एलिमुर राजा लेके ढोल बाजा, और मैसेज करने वाले हैं दिलीप शर्मा पठरा टोला से, नेक्स्ट मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज़ मैम। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे, और सबके साथ एंजॉय करते हैं आपके गाने को।

0: सॉन्ग। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और हमारे पास यहाँ फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते,
1: क्या हाल है?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। जी नाश्ता हो गया है। और वैसे आपका नाम क्या है?
1: संध्या कुमारी है, प्रदान।
0: अच्छा जी, और कौन से गाने की फरमाइश है?
1: राजी प्यार मत करना ये गाना।
0: और
1: राजी प्यार करियो यही गाना सुनाना है।
0: हाँ, और गाना किसी को डेडिकेट है?
1: आपको, रेडियो रिम सुनने सभी श्रोताओं को।
0: जी तो चलिए आपके गाने को प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ अपने गाने को रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, राधे राधे मैम, मैं संजय यादव दुबई से जुड़ चुका हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, मैं राजकुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार है आपको एंड सभी दोस्तों को भी नमस्कार। हम श्री राम सासाराम तो दिल्ली से जुड़ गए हैं और मेरा भी इस फरमाइश से बजा दीजिएगा, धन्यवाद, और मेरा भी मैसेज शामिल हो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती मैम, हम भी शो से जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए और हमें भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मन्नू मौर्य मैथी हाटा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं, हमें भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नफ़रत को मोहब्बत की आंखों में देखा और बेरुखी को उनकी अदाओं में देखा, आंखें नम हुई और मैं रो पड़ा, और जब आपने अपने को गौर की बाहों में देखा, अपने को गैरों की बाहों में देखा, तो बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है यहाँ हमारे पास ओम साइन टेलर की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, मैसेज पढ़िएगा जरूर, नमस्ते नमस्कार सोनी मैडम जी, राजकुमार राम बालाघाट एमपी, स्लोक राइस मेल, आज हमारा एक सप्ताह पूरा हो गया है, हम एक बाजीगर फिल्म का गाना सुनाइएगा, बाजीगर वो बाजीगर, हमारे मुंशी जी हैं सागर भैया, खतरे की सुभाष भैया जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे, बाजीगर ओ बाजीगर, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना राम कुमार जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बाजीगर ओ बाजीगर, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी मेरा फरमाइश सुना दीजिए, पिछले बार भी नहीं सुना पाई थी, और 1:30 के बाद बजाइएगा। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, इंतज़ार रहता है हर शाम तेरा, याद करती है ले ले के नाम तेरा, मुद्दत से बैठे हैं ये आस पाले कि आज आएगा कोई प्रोग्राम तेरा। तो ऐसी बात है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और हो सके तो मुझे भी गाना एक सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास फरमाइश पहुंचा हुआ है। सलमान अली बनकटी बकंठपुर गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं, और लिख रहे हैं, हाय नी मेरी मोटो सॉन्ग हिंदी बजा दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और सभी के साथ एंजॉय करते हैं।
1: छोटे प्यार हो गया यार।

0: किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, उकी बहु किसे ता पटा कोना, जिसका बलमा पावरफुल है। चले मोटो।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 22 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय सुनिधि भारती दी, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कल का नहीं बजा है तो प्लीज़ आज बजा दीजिएगा। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आज़ाद कमाल घर बिहार जिला बेतिया चौकटिया 5 नंबर वार्ड से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, दिल कहता है चल उनसे मिल सॉन्ग सुना दीजिएगा, और सिवान से जुड़ चुके हैं अमित कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती मैडम, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमें गाना सुनना है, मेरा नाम और गाने के बोल है मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। तो चलिए बिना देरी किए सन्यासी रंजन जी के गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है बहुत सारी, और मैसेज करने वाले हैं जो लिख रहे हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ, मैं साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ। और आप कैसी हो? सोनू कुमार चौरसिया, रामपुर खरैया कुचायकोट गोपालगंज से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, गाना प्ले करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो लिख रहे हैं, 1 घंटा बाद बजाना मेरा गाना, तो बिल्कुल, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। हसमत अली अंसारी चैनपुर सिवान से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग भारती जी, नारी मूवी सॉन्ग प्यार में दिल दे दिया सागर

सागर बलचंदनी फ्रॉम बालाघाट से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो लिख रहे हैं, गाना बजाए खातिर धन्यवाद आपका भारती जी। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, हेलो हाय नमस्कार, मैं जो लिंक भेज रहा हूँ वो सॉन्ग चला दीजिएगा, चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्तों को ओम साई टेलर राघू जी की तरफ से ये गाना सुनाया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी मेरा फरमाइश सुना दीजिएगा, पिछली बार नहीं सुनाई थी तो। और गाने के बोल है, लम्हर अंजरी पसरीह ए बबुआ हो, लम्हर अंजरी पसरीह ए बबुआ हो। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश, और एंजॉय करते हैं इनके भी गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना एक शादी का खूबसूरत सा गीत, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो जी नमस्कार जी, कैसी हैं आप लोग, कैसी हैं आप लोग और दोस्तों, आप गुड आफ्टरनून, आज फरमाइश कर सकता हूँ, मेरा नाम है शाहजहाँ विलेज मुगल ब्रिजिया से सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है, मैं सोनू चौरसिया कानपुर बाज़ार से, दिल का क्या करे साहब सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं आँखी के कजरवा से अवधेश प्रेमी का सॉन्ग है, मैम बजा दीजिएगा। तो बिल्कुल कोशिश है। और यहाँ लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ बिना देरी किए। और हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है रंजन कुमार जो कि तमकोही रोड के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने के बोल हैं छोड़ के न जा ओपिया, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। और लिख रहे हैं भारती जी हमारा फरमाइश है बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके फरमाइश को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: पेशाब क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ेंगे अगले मैसेज को, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मजा आ गई बा, और लिख रहे हैं मिठास आपकी बातों में दिल को छू जाती है, और रेडियो रिमझिम पर मैम आपकी आवाज़ से ही खुशियाँ आती हैं, और सुना दीजिएगा मैम। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम आई एम गोल्डन टेल हर इन फ्रिदरिया से हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हमको एक गाना सुना दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं शमशेर मुंबई से गुड आफ्टरनून, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी अंजरी किसका पसारा जा रहा है, पंकज जी भी की सोनू भाई के पर सबसे ज़्यादा पंकज भाई की ज़रूरत है, अंजरी पसारे की सोनी जी तो रेस्ट में हैं, और दिलीप राम मैसेज करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिना देरी किए हैं यहाँ बढ़ेंगे अगली मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मन्नू मौर्य गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं दिल लगा लिया। तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है मन्नू जी की तरफ से, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारी फरमाइश पहुँची हुई है, और मैसेज करने वाले हैं। लिख रहे, मेरा नाम अंश तुषार अहिर है, मुझे जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ गाना सुना दीजिएगा। और आज सोनी मैम हैं क्या? तो नहीं, आज सोनी मैम नहीं है। और यहाँ लिख रहे, मेरा नाम रेखा सुनील रेखा है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ, और मुझे जरा तस्वीर से निकल के सामने आ गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ आपके इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुशवाहा, महुआ, वैशाली, बिहार। हमारा भी मैसेज को गाना सुनना है, मिसेस को गाना सुनना है, और कृपया सुना दीजिए। तो जी बिल्कुल सुनाएंगे, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, और खूबसूरत सी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि अमित सिवान से जुड़े

तो अभी हम लोगों ने अमित जी की तरफ से सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग दिल कहता है चल उनसे मिल, और इसी के गाने के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे यहाँ पास फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम प्रणाम, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम से, हमको गाना सुनना है, गाने के बोल हैं दिल देता नहीं लेला दिलदार संवरिया हो। और इसी के साथ अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और लिख रहे हैं यहाँ सब कुछ मिला बस खुदाई के सिवा, और ज़िंदगी बहुत पसंद आई रसवाई के सिवा, और मेरी चाहत का एहसास भी ना होगा उसकी हर अदा पसंद आई बेवफाई के सिवा। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ है ओम साई टेलर जी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, मैं संदीप कुमार माधोपुर सिवान से, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा पवन सिंह की आवाज़ में काल तुहार मेहंदी रची। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना सुनना है अनाड़ी मूवी का, और गाने के बोल हैं प्यार में दिल दे दिया। तो चलिए बिना देरी किए

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।

0: सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ेंगे अगला मैसेज, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी मैम, मैं अनिस यादव विलेज डुमरा यदवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से हूँ, और सोनी मैम के लिए स्पेशल शायरी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं, सुरों की मिठास हो आप, मुस्कान की पहचान हो, हर दिल को सुकून दे जो वो प्यारी सी आवाज़ हो, हर दिल खुशियों से भर, हर दिन खुशियों से भर जाए आपके हर एक पल, सोनी मैम आप हमेशा यूं ही रोशन करती रहें हर दिन हर दिल। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन, और इसी के साथ लिख रहे हैं, मुझे गाना है, मुझे बना ले हम दुल्हनिया सॉन्ग सुना दीजिएगा, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मनीष यादव, सतीश यादव, नितेश यादव, रौनक यादव, अंकित यादव, अंजलि यादव, नंदिनी यादव, मिष्टी यादव, मिल्की यादव और पूजा राजपूत को, साथ ही आपको भी दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ सोनी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ इसी के साथ अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, मेरा मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना चल रहा है सुपर सॉन्ग, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ गुड। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हाय सोनी जी क्या हाल चाल, मैं भी एक गाना, मुझे भी एक गाना सुना दीजिएगा, फिल्म चिच्चोर, और स्वर है यासुदा सॉन्ग, आज से पहले आज से ज़्यादा, डेडिकेट है ऑल लिसनर को, और वीरेंद्र गुप्ता तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जी, और लिख रहे हैं, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हैं जो करते हैं करते हों, जब हमने पूछा मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। तो बहुत ही खूबसूरत के लाइन के साथ, और गाना सुनना है, बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मुकेंद्र कुमार जी की तरफ से। तो उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, दिल से धन्यवाद आपका। तो बहुत बहुत इन्जॉय किया अपने गाने को, बहुत अच्छा लगा। और आप यहाँ मैसेज कर रहे हैं, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों ना करें याद तुझे तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। बहुत ही खूबसूरत लाइन। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, मेरा नाम केतन है, आज भारती मैम आपके लिए गाना है, चेहरा है ये चांद खिला है, सुना दीजिएगा खास भारती मैम के लिए। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, मैं सुनील कुमार आपसे जुड़ गया हूँ और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए, गोपालगंज का रहने वाला हूँ, उज्जैन में हूँ और मेरा एक सप्ताह हो गया है और हमको भी शामिल कर लो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और अपने गाने की फरमाइश भेज दीजिए, ज़रूर प्ले हो जाएगा।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजीम 90.4 FM। और हमारे पास, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 22 91। यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को शुरू करेंगे और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं असम से सागिर आलम अंसारी। फरमाइश करें कि आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, फरमाइश कर दीजिए, आपका भी बच जाएगा क्योंकि आपके फरमाइश का टाइमिंग हो चुका है। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हम भी लाइन में हैं। तो जी बिल्कुल, सभी यहाँ पे लाइन में हैं और सभी के गाने की फरमाइश को प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हम दिनेश विश्वकर्मा न्यू मुंबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी हैं, अरे भाई

अरे भाई ब्रेक में मैसेज छोड़ आवाज़ आपका नहीं सुने थे, पर आपका भी स्वर बहुत ही लवली है, मिठास से अच्छा प्रस्तुति है, शुक्रिया। पर शांत से पढ़ें, घबराए मत, मेरा पता। मेरे पता का कोई ज़रूरत नहीं है, आप एड्रेस पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा नाम ही काफ़ी है। इस प्रोग्राम से मैं कभी कभी जुड़ता हूँ, क्योंकि दिन में हमें प्रोग्राम सुनने की टाइम ही नहीं मिलता, समय के अनुसार जुड़ते हैं, और मैं सिर्फ पुराने ही सॉन्ग सुनते हैं। शायद आपको अच्छा नहीं लगे, चलिए मेरा सॉन्ग सुना दीजिएगा, वीरेंद्र गुप्ता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ऐसा नहीं है, पुराने सॉन्ग भी बहुत अच्छे आते हैं, और पुराना सॉन्ग ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पता चलता है आज के सॉन्ग तो उतना कुछ खास नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे, यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई हमारे पास, लिख रहे, नमस्ते भारती जी, मैं संदीप कुमार माधवपुर से सिवान से, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा पवन सिंह की आवाज़ में। और गाने के बोल हैं, कल तुहर मेहंदी रची, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में, काल तो हर मेहंदी रची संदीप कुमार जी की तरफ से। तो और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, थैंक्स भारती जी गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं राधे राधे भारती मैम, मैं संजेश कुमार कर्नाटक से जुड़ा है और एक लाइन के साथ, और लिख रहे हैं कि मुफ्त की रोटी का एक टुकड़ा खाने की सजा मौत होती है, ये बात एक चूहे से बेहतर और कौन जानता है, और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये बात जाल में फंसी मछली से पूछो। मीठे शब्दों पर तुरंत भरोसा मत करना, शिकारी भी दाना प्यार से ही डालता है, हर आसान रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचता, कुछ रास्ते सीधे बर्बादी की तरफ भी जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ हैं जुड़े हुए संजेश जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: हाँ भारती मैम बोल रही हैं
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी गाना बजाना था।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: आदर्श पांडे।
0: अच्छा जी, और गाना कौन सा सुनना है?
1: सजदे।
0: सजदे,
1: हाँ।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सभी रेडियो रिमझिम के मास्टर को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।
1: ठीक है।

0: अब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: पापा, शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सॉन्ग सुनना है मैम, जिंदगी बन गए हो तुम यही सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम। तो जी बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, मैं तारकेश्वर मांझी दुबई से, मैम जी मेरा एक सप्ताह के दिन को बताइएगा। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं, तेरे इश्क में डूबा हूँ और तुझको ये मालूम नहीं है, और मेरी आंखें ना पढ़ पाए इतनी तू मासूम नहीं है, मेरे हिस्से की मोहब्बत पर चार गजलें लिख डाली, जहाँ तेरा हिस्सा लिखना था वो पूरा पन्ना खाली है। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: हेलो जी मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम है आशीष पांडे
0: और कहाँ?
1: मैं बंजारी का रहने वाला हूँ।
0: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: कोई भी अपना पसंद से अच्छा गाना बजा दीजिए।
0: आप कॉल किए हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मेरी पसंद अच्छा। से तो आप लोग हर रोज सुनते हैं पहला सॉन्ग या लास्ट का,
1: तो बजा दीजिए। अर्ज किया है भाई अनुप जैन।
0: अर्ज किया है सॉन्ग का नाम? अर्ज किया है,
1: हाँ गाना का नाम है अर्ज किया है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: हाँ मेरे भाई को और मेरे सभी दोस्तों को।
0: और ये सॉन्ग किस सिंगर का है?
1: अनुप जैन।
0: चलिए आपके गाने को प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में वे हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: This was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

0: .in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सह पालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप

हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 78291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, तो चलिए बिना देरी किए सभी के मैसेज एक एक करके पढ़ते हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं सोनी जी, गुड आफ्टरनून। मनीष रजाक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, मैं भी गाना सुनना, मैम मुझे भी गाना सुना दीजिएगा, गाने का लिंक भेज रहा हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं अब बजा दीजिए प्लीज़ दीदी, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इंतज़ार कीजिए थोड़ा, लेकिन आपका भी गाना प्ले होगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं आज सुना दीजिए, मेरे को सुना ही दीजिए मैम। तो चलिए आपको भी सुनाया जाएगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो, आज न्यूज़ नहीं चलेगा क्या? तो न्यूज़ तो चला है, आपने नहीं सुना क्या? और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो नेम रियांश कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से, सॉन्ग नाम नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया में आई जीता हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैं भी जुड़ गया हूँ साउथ अफ्रीका से, सुन रहा हूँ। और आप कैसी हैं? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया से। और गाने के बोल हैं आँख के कजरवा पे अवधेश प्रेमी की आवाज़ में। और लिख रहे हैं सारे विदेशी भाइयों के लिए सॉन्ग है, डेडिकेट है। और मैसेज देख के आप गाना ना बजाएं काम मैम, तो नहीं ऐसा नहीं है। चलिए अभी आपके गाने को प्ले कर रहे हैं और इंजॉय कीजिए सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग देश प्रेमी जी की आवाज़ में।

तो अभी हम लोग ने सुना अवधेश प्रेमी की आवाज़ में सॉन्ग, और लिख रहे हैं हम यहाँ मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको सॉन्ग बजाने के लिए, और ये गाना सभी विदेशी भाइयों के लिए डेडिकेट था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं। जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, आ गई नहीं हम हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए मैम। तो यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं गाना भेज दूँ मैम बज जाएगा क्या, तो पूरी कोशिश रहेगी आपके भी गाने बजाने की। और यहाँ एक और मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग भाई, सुपर सॉन्ग भारती दी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ

नमस्ते भारती जी, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से। क्या हुआ सोनी जी, बहुत छुट्टी में हैं आजकल। सोनी की छुट्टी बहुत मार रहे हैं। चलिए आप लगे रहिए और हमारा भी गाना का आज फरमाइश है, अगर बजा दीजिए तो ठीक है, बोलिएगा तो फरमाइश करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो शायद हमने आपके गाने की फरमाइश ठीक किया था। और इसी के साथ अगला मैसेज, नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं, आज़ाद कलाम घर बिहार जिला बेतिया जौकटिया नंबर 5 नंबर वार्ड से, और गाने की लिंक हमारे पास

0: और यहाँ एक ही गाने को दो दो बार इन्होंने डबल डबल व्हाट्सएप नंबर से फरमाइश किया है, और अभी हम आपने सुना अपने गाने को अधेश प्रेमी की आवाज़ में। तो अभी मैं ये गाना प्ले नहीं कर सकती, और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है। सागिर आलम अंसारी फरमाइश करते हैं, और आपको गाना बिन बदरा के बिजुरिया कैसे चमकी, और तो चलिए बिना देरी किए प्ले करेंगे इनके गाने को और एंजॉय करेंगे सभी के साथ।
1: आज बरसात का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिजुरिया।
2: वाह वाह वाह, तो हर जवाब नहीं

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है बहुत सारे, और लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार भारती जी, कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, डरते हैं लिख रहे हैं डरते हैं आग से कहीं जल ना जाए, डरते हैं ख्वाब से कहीं टूट ना जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा डरते हैं आपसे कहीं आप हमें भूल ना जाए। ओहो तो ऐसी बात है, नहीं कोई आपको भूला नहीं है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम और प्ले सॉन्ग मैम, तो बिल्कुल प्ले किया जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास एक दो फरमाइश और है, पहले उसे प्ले कर लें उसके बाद। और यहाँ एक और मैसेज है जो कि लिख रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिए भारती जी, तो जी बिल्कुल आपका भी गाना बजाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अगली फरमाइश को शामिल करेंगे, और यहाँ हमारी आरजे मनोरमा जी इस फरमाइश को प्ले करेंगी।
1: हमारा अगली फरमाइश है बबलू कुमार जो कि गोपालगंज तिरबिरवा से हैं, और लिख रहे हैं नमस्कार मैम, मैं लाल बाबू कुमार तिरबिरवा से, मैं बहुत दिन हो गया, मेरा एक गाना बजा दीजिए सोल्जर मूवी का कोई भी गाना। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं।

और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मनोरमा जी शामिल करेंगी, क्योंकि ये सारे मैसेजेस मनोरमा जी के लिए हैं। तो चलिए मनोरमा जी, मैसेज शामिल कीजिए।

हमारा अगला मैसेज है दिलीप राम जी की तरफ से, और ये लिख रहे हैं मनोरमा जी नमस्कार, और भारती जी आपको भी नमस्कार जी। तो नमस्कार, आवाज़ नया सुना आपकी, दिलीप राम दिल्ली से बोल रहे हैं। और यहाँ अगला मैसेज है सोनी जी, गुड आफ्टरनून, मनीष राजक। और यहाँ अगला मैसेज है मनीष राजक, फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिए, गाना का लिंक भेज रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा शायरी जो लिखे हैं, कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे, हम तो दरिया है समंदर में उतर जाएंगे, वो तरस जाएंगे प्यार की एक बूंद के लिए, हम तो बादल हैं प्यार के किसी और पर बरस जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और गाना का लिंक पहुंचा है, चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करें 87894-18744।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
13: हर

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मनोरमा जी, ये आपकी आवाज़ में सुनना है, सुना दीजिए प्लीज़। सीरियस नहीं लीजिएगा, बस इंजॉय के लिए है। तो मनोरमा जी शामिल कीजिए इस लाइन को।

0: हमारा अगला मैसेज है मुकिंदर जी की तरफ से, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत शायरी लिखा है और लिखा हाय क्या शायरी है। दिल तोड़ा तुमने पर आवाज़ नहीं हुई, दर्द तो हुआ बहुत पर शिकायत नहीं हुई। तुम भूल गए हमें ये तुम्हारी आदत थी, हमने याद रखा तुम्हें ये हमारी मोहब्बत थी।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रजाक जी की गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम प्लीज़ लाइन सुनाइए, खूबसूरत है। और आप दोनों मैम को मेरा प्यार भरा नमस्ते जी, सो बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, लाजवाब झकास, वाह सुपर लाइन। और मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से अभी दुबई से सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे बिना देरी किए अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंचा हुआ है साहिद जी की तरफ से, और लिख रहे हैं आज मेरा सॉन्ग बज सकता है क्या, तो जी बिल्कुल बजेगा। और लिख रहे हैं यह एक अच्छा विकल्प है, यह एक अच्छा विचार है, एक बार फिर से एक साल हो गया, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकल्प है। क्या मतलब, चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ। और गाने के बोल हैं गैरों से कहा तुमने और अनुराधा पडवाल की आवाज़ में है, तो चलिए बिना देरी के गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गैरो से कहा तुमने, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं संजय इस कर्नाटक से जुड़े हुए हैं और इन्हें भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, कैसी हैं मैडम जी? मैं प्रीति रायदास विलेज लकड़ी दरगाह से डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, मेरा भी फरमाइश है। आज मेरी एक दिन कंप्लीट हो चुका है, तो आज मेरी फरमाइश है सॉन्ग मेरे नेम धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है, और जल्द ही प्ले कर दीजिए, नमाज के से पहले सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा मैडम जी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तो चलिए बिना देरी किए प्रीति जी के गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ।

0: मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको आपकी घटिया शायरी की कसम। आप ईमान से बोलिए, ये शारदा देवी का असली बेटा है?
1: अरे नहीं यार।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9196973।
7: हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।

0: कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774186164।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास मैसेज अभी भी आ ही रहे हैं, और यहाँ मैसेज करने वाले हैं निज़ामुद्दीन, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैन टेलर्स सूरापुर से, भोजपुरी गाना सुना दीजिएगा मैडम जी, हैंडसम हीरो खेसारी लाल यादव जी की आवाज़ में, पापा के दमाल करेजा तोहके बनाए हो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, कॉल के राजू जी की तरफ से, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं ओढ़नी के रंग पियर, तो प्ले करते हैं गाने को और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

और यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा गाना चल रहा है उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो कि हरपुर से जुड़े हुए हैं और गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। तो एंजॉय कीजिए सभी इस गाने को।

अभी हम लोगों ने सुना उत्तम सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग ओढ़नी के रंग पियर, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम थैंक यू सो मच, ढेर सारा धन्यवाद जी मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, गाना इतना खूबसूरत भजवाने के लिए। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, लिख रहे हैं का बात बा अभी तक हमार गीत ना बाजल और 12:22 में भेजले बा, 12:22 में भेजले बानी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे, और गाने के बोल हैं आज से पहले आज से ज़्यादा

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं लग भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मेरा सॉन्ग बच सकता है क्या? तो बिल्कुल बच सकता है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, शुक्रिया आपको कि आप हमारे पुकार को सुन ले एक बार, और थैंक्स ले लीजिए। और लिख रहे हैं, पर सॉन्ग क्यों काट ली, पूरा गाना बजाना चाहिए था, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, गाना तो बहुत ही अच्छा था, और 6 मिनट का, 7 मिनट का गाना मैं प्ले नहीं कर सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का प्ले कर सकती हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्ते, सोनी जी नहीं है क्या, भारती जी आई हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रहीम लाल नरकटिया बाज़ार, योगेश कुमार फैशन टेलर नरकटिया बाज़ार से, और हम इंडिया में नहीं थे इसीलिए नहीं सुन रहे थे और नेपाल चले गए थे, और हमारा भी गाना बजा दीजिएगा। और गाने के बोल है लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और पूरी कोशिश है आप सबके गाने को प्ले करने की। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो कॉल लेंगे।
6: हेलो मैम।
5: हेलो।
6: हेलो नमस्ते मैम
5: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: मैम ये क्या बोलते हैं, सोनी मैम का है
5: जी? सोनी मैम तो अभी नहीं है, वो छुट्टी पे हैं।
6: चलिए ठीक है मैम, तो आज गाना बजा दीजिए मेरा।
5: बता दीजिए, नाम बता दीजिए पहले अपना।
6: मैम नाम तो है पाजी यूपी चौवन।
5: और गाना कौन सा सुनना है?
6: मैम सुनना है कितने दिनों के बाद मिलो, आंदोलन मूवी का गाना है।
5: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
6: जी मैम, अरुण है, छट्टू है, एक छोटा सा लड़का है हमारे, और हमारी एक चाची है
5: जी
6: अभी, और हमारे क्या बोलते हैं कि विद्या निवास चाची जो इंदौर के रिश्ते सुनते हैं
5: जी जी। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
6: ठीक है मैम, थैंक यू।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, कितने दिनों के बाद मिले हो। तो इसी सॉन्ग के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं, हेलो नमस्कार जी, कैसी हैं आप, वेलकम मेरा भी कीजिएगा आप। और शाहजहाँ जी विलेज मुगल परिचा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से बिहार का रहने वाला हूँ, और सोनी जी भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, आई एम एट होम लोगान एयरपोर्ट सॉन्ग। और लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम, अली हुसैन अंसारी जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कुंदन कुमार यादव बिहार मुजफ्फरपुर से, और गाना सुनना है हम हैं पिया जी के पतरी तिरुआ, और फिल्म है पटना से पाकिस्तान। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और ये लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये गाना सुन के, धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनील कुमार आपसे जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, काम करने में व्यस्त हो गया था इसलिए ध्यान नहीं दिया। और लिख रहे हैं, जिंदगी उस दौर से गुजर रही है, दिल दुखता है लेकिन चेहरा हंसता है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे, और गाना है बिहारी पिया बिहारिया, और इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज हमें दीजिए जाने की इजाज़त, और सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34-03, 62042-34-03। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स को।

0: जनकपुर, अरे राज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जब बुझ जाई समय चाहे कतनो तेल लगा लो अरे खा लो दूध मलैया।
1: राम नाम आधार बा एह जीवन में, यही से कवि कहतड़े देही का कहतड़े।
0: राम नाम रस पिया, राम नाम रस पिया भैया हँसी हँसी।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
5: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: रंगदार हवा की हमार हो।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello?
6: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: कैसी है मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो कॉल लगा रही थी, उसी समय से कॉल लगाते लगाते आओ लगेगा और लगेगा, लग ही नहीं रहा था।
1: चलिए कोई नहीं, देर सवेर तो लग ही गया।
2: तब और सब बताइए?
1: और सब तो ठीक है।
2: आपका खाना हो गया है? ठीक है।
1: कौन सा गाना आज सुनना है?
2: मैम आपको नाम बता दे रही हूँ।
1: बता दीजिए।
2: मनीषा कुमारी। मैम गाना आज उस दिन का शुक्रवार का सुन रही हूँ। गाना
1: बजा था?
2: बज गया, आज ही बजा है।
1: सुबह में भी बजता है,
2: शनिवार को भी बजा, शनिवार को भी कभी एकदम फुल साउंड में सुन रही थी बजा कर।
1: चलिए सुनने को मिला, अच्छी बात है।
2: बता दे रहे हैं आपको कि आपको भी पता चल जाए कि सुन ली हूँ गाना।
1: कौन
2: आज सुनवा दीजिए अब देशभक्ति गाना।
1: गाने के कुछ बोल याद है?
2: ये आन तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
2: जी मैम, आपको और अपने घर में सभी को और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनकर ये सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
2: जी मैम।

0: अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे।
1: हेलो नमस्ते
2: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम।
1: गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा जिला गुना। बढ़िया है, आप कैसी हो?
2: मैं ठीक हूँ
1: जी। अभी तो हम खेत पर जा रहे हैं।
2: अच्छा, क्या खेत पर जा रहे हैं?
1: खेत पर जा रहे हैं अभी तो, क्योंकि खाद छाटेंगे, मक्का में फसल लगा रखी है हमने मक्का की।
2: अच्छा जी,
1: और क्या, और आपके कार्यक्रम सुनते हैं रेडियो रमजन के पूरे? और क्या,
2: हमें अच्छा लगता है,
1: बढ़िया लगता है। और क्या है, भुट्टा आएंगे अभी तो एक महीने बाद।
2: चले बढ़िया है,
1: भुट्टा आएंगे अभी तो एक महीने बाद।
2: चले बढ़िया है।
1: गाना सुनना है?
2: कौन सा?
1: वो साजन के घर फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम है साजन का घर।
2: गाने के
1: बोले, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चेकी फूल के ले, आने वाले कब आएंगे लेकिन तुम कब आओगे। साधना सरगम कुमार सानू का आवाज में
2: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: डेडिकेट है हमारे दोस्त है जीतेन धाकर, सुनील साहू है मकसूदनगर से, ज्योति साहू जी है, नरेश प्रजापति जी इनके लिए है और आपके लिए भी है
2: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956597644।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
7: जी मैं सुधीर खोर बोल रहा हूँ, कोरिंगवाई जिला देवघर झारखंड से। मैम
8: कैसे हैं आप?
7: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
8: मैं भी अच्छी हूँ
7: जी। आज गाना सुनेंगे मैम प्रेम रोग फिल्म का।
8: और गाने के बोल?
7: गाने के बोल हैं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तुझे प्यार करता हूँ, इस तरह के गीत के बोल हैं। सुरेश वाटर की आवाज में।
8: जी जी, और गाना किसी को डेडिकेट है?
7: पहले मैम आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, आपके रेडियो रूम के पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिव्यू के लिसनर हैं सबों को, और हमारे कुछ दोस्त हैं मदन को लें, कुमार प्रभु को लें, कृष्ण को लें, भोलानाथ को लें, संजय को लें, विष्णु प्रसाद यादव, श्रीधर प्रसाद यादव, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
8: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनकर सबके साथ रेडियो रमजन 90.4 एफएम।
7: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो कॉल लगा रही थी, उसी समय से कॉल लगाते लगाते और लगेगा और लगेगा, लग ही नहीं रहा था।
1: चलिए कोई नहीं, देर सवेर तो लग ही गया।
0: तब और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
0: आपका खाना हो गया है? ठीक है।
1: कौन सा गाना आज सुनना है?
0: मैम आपको नाम बता दे रही हूँ।
1: बता दीजिए।
0: मनीषा कुमारी। मैम गाना आज दिन का शुक्रवार का सुन ली हूँ। गाना
1: बजा था?
0: बज गया, आज ही बजा है।
1: सुबह में भी बजता है।
0: शनिवार को भी बजा, शनिवार को भी कभी एकदम फुल साउंड में सुन रही थी बजाकर।
1: चलिए सुनने को मिला, अच्छी बात है।
0: बता दे रहे हैं आपको कि आपको भी पता चल जाए कि सुन ली हूँ गाना।
1: कौन
0: आज सुनवा दीजिए अब देशभक्ति गाना।
1: गाने के कुछ बोल याद है?
0: ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी मैम, आपको और अपने घर में सभी को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम, बाय मैम।
1: बाय।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के

0: SMS को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगजीम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते,
1: कैसी हैं मैडम जी?
2: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ।
2: तो नाश्ता हो गया आपका?
1: जी नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया जी।
2: आपकी तो आज कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना सुना दीजिए, आज मैं 50 साल के बाद याद आएगा।
2: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: आपके आज इतना रेडियो रंगजीम आ गया सबके, सब दोस्त सुनता है सबके साथ।
2: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: ठीक ब्राह्मण
2: सुना दे मैम,
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: निरवा गाना सुना दे, मरून कलर साड़ी वाला।
0: अच्छा, और गाना क्योंकि सुना होगा
1: सबके सुने, रवा सुन ले।
0: हम तो सुनबे करें,
1: गुरु में जितना लोग लग सुने। और सब बताए?
0: अरे सब तो ठीक बाबे,
1: कब सुना दे गाना?
0: ये गाना और कल सुने के मिल जाए।
1: ठीक, और सब बताए?
0: सर ठीक बात,
1: गाना सुना दे।
0: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते नहीं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856-587।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
13: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrwar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: सलाम।
15: हेलो, मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
14: और मैडम जी, इधर मौसम कैसे हो रहा है?
15: मौसम तो इधर गर्मी पड़ रहा है और धूप भी निकला हुआ है।
14: तो नहीं बोल रहे ना?
15: नहीं, भारती बोल रही
14: हूँ। गाना सुनना थी,
15: बता दीजिए।
14: रावी फिल्म का
15: गाने के बोल,
14: गाने का बोल है नौलखा मंगा दे रहे गाना, जितने रेडियो रिव्यू वाले तो
15: जी। तो चलिए फिर, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM
1: मैडम,
0: में। नमस्कार।
1: मैं प्रदीप कुशवाहा।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: अभी उधर का मौसम कैसा है?
0: इधर का तो मौसम बहुत गर्मी पड़ रहा है और धूप भी निकला हुआ है।
1: उधर बारिश चालू है अभी।
0: अच्छा, चलिए तब तो अच्छी बात है।
1: क्या अच्छी बात है, खराब है?
0: क्यों,
1: ठंडी भी चालू हो गया ना बारिश?
0: ठंडी कहाँ चालू हो गया,
1: हमारी तरफ चालू है।
0: अच्छा, आपकी तरफ चालू है, बारिश हो रहा है तभी तक?
1: अभी बारिश चालू है, एक हफ्ता से हो गया, 24 घंटे बारिश चालू।
0: अच्छा, चलिए कोई नहीं, बारिश खत्म होगा तो। इधर तो बारिश हुआ उसके बाद भी मौसम इतना गर्म है कि पूछिए मत।
1: बारिश एक हफ्ते से चालू है, 24 घंटे बारिश हो रहा है।
0: तब तो अच्छा नहीं है। हाँ, दिक्कत तो होता है बारिश में।
1: आप सुनिए ना, बात कर रहे थे?
0: नहीं,
1: मैं सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, आवाज में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
1: मतलब 2 महीने बाद फोन किया हूँ ना। कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं रह रहा है, आज रूम पे फोन कर लूँ।
0: चलिए कोई नहीं, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: बरसात का कोई सॉन्ग बजा दीजिएगा।
0: कौन सा?
1: बरसात का।
0: बरसात मूवी का या फिर बारिश वाला सॉन्ग? कोई
1: बारिश वाला सॉन्ग।
0: अच्छा,
1: नहीं नहीं ये गाना बजाइए ना, खराब में होता है।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: खराब में होता है।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया?
1: सबसे पहले आपको जितने भी डेटेड सुनते हैं सही रहता है।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up.
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
8: क्या हाल है?
9: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
8: नासा तो हो गया?
9: हाँ, नासा हो गया। आप सभी का हो गया?
8: मैं संदेक मौर्य बोल रही हूँ।
9: आज कौन सा गाना सुनना है?
8: हाँ बोलिए,
9: आज कौन सा गाना सुनना है?
8: कब सुना रही है गाना? हम तो सुन भी नहीं पा रहे हैं। हमें फरमाइश कर रहे हैं लेकिन कभी भी नहीं सुन पा रहे हैं।
9: शाम को बजता है 5 बजे से 7 बजे के बीच और सुबह सेम रिपीट होता है सॉन्ग 9 बजे से 11 बजे के बीच।
8: सुना दीजिएगा, ये काटू कैसे रहा रतन बावरे नचियाल गाना है।
9: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
8: लंबी है, लंबी है।
9: हाँ हाँ,
8: आपको और सुनने वाली रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को
9: आप सुन लीजिएगा ना। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।
8: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगून 90.4 FM।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार।
0: और क्वेश्चन बनी?
1: हम तो ठीक बनी, रहो बताए रहो कैसन
0: बन। बस ठीक है बनी, आज छुट्टी रहेला।
1: आज तो छुट्टी रहेला।
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली। तो आज तो अकेले ही रह पड़ी। तो चली नी?
1: चली
0: ठीक है बा, चला ही
1: कोशिश तो बा।
0: गाना सुना दिए,
1: बता दी कौन सा गाना?
0: अमित उपाध्याय के गाना है फादर के आदर मदर के कदर। ये सुना दे।
1: और गाना
0: क्यों सुना? बस रौरे लोग सुनावे के बाद टोनी मैम जहाँ रहे मुझे सुन ले, रौडू सुन ले, और जितना हमारा नाम से जाने वाला लोग सब सुनू। तनी बढ़िया गाना बटे, एकरा के काटे मत। हाँ तो काटे मत, तनी एक बढ़िया गाना बा, कोनो खराब गाना नहीं छे। हमरा मुँह से खराब गाना तो रेडियो में नहीं जाये, हम ना सुन ले। चले फिर सुना दे।
1: गाना प्ले करते नहीं सुनते रेडियो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
16: ब्रेक के के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
18: नमस्ते दीदी।
17: नमस्ते,
18: क्या हाल है?
17: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। क्या हो रहा है अभी?
18: अरे क्या हम कर रहे हैं अपना, अभी तो पहला कॉल है।
17: अभी तो आपका पहला ही कॉल है।
18: और सर बताइए।
17: और सब ठीक है
18: दीदी? क्या हाल है?
17: आज छुट्टी पे हैं।
18: आज छुट्टी पे है? आज तो आप ही सोच चलाएंगे। मेरा एक हफ्ता हो गया है, मेरा गाना बजा दीजिए। ठीक है, आज बजा दीजिए गाना है। ओढ़ने उड़ के नाचेंगे गाना पे।
17: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
18: आपको, सोनी देवी को, मनोरमा देवी को, अपूर्वा देवी को।
17: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम जय जिला बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: क्या है, मैम अपना बताएं।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और क्या हो रहा है?
0: बस आप सभी से बातें हो रही हैं।
1: और मौसम का क्या हाल चाल है गोपालगंज में?
0: मौसम तो इधर अभी गर्मी पड़ रहा है।
1: गर्मी बहुत ज्यादा, 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रहा है।
0: और धूप भी वैसा ही निकल रहा है,
1: बहुत तगड़ी धूप हो रही है। तो मुझे गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: और एक गाना है, ओए राजू प्यार मेरा जो दिल टूट जाता है, यही गाना सुना दीजिए।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ring pe bajte hai to kehte hai hello.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
17: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
15: जी नमस्कार मैम,
16: रेडियो रिंचन 90.4। नमस्कार
15: मैम,
16: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: जी हम भी ठीक हैं। जी मैम, आप कॉल कट कर रही हैं?
16: जी कॉल कट कर रहे हैं।
15: जी उठ गया था अभी भी?
16: नहीं तो वो आवाज नहीं आ रहा था मेरे को।
15: आपका आवाज आ रहा था, इधर भी जा रहा था ना?
16: इधर से मतलब आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी।
15: जी मैम लग के कट गया, बहुत मेहनत करके लगाया था।
16: अच्छा, नहीं आपकी आवाज आ नहीं रही थी, बहुत देर से हेलो हेलो कर रहे थे इसीलिए कट करना पड़ा।
15: आज बहुत कोशिश की है मैम, 11 बजे 2 मिनट लगाए।
16: अच्छा, हम स्टार्ट भी उतना ही टाइम से किए।
15: जी मैम, 11 बजे राइट लगाए थे तो बंद था। आपसे शिकायत है दूसरा शो का कि आप मैसेज शामिल क्यों नहीं करती है मैम?
16: मैसेज शामिल करते तो है।
15: जी मैम, नहीं योर वॉइस है ना उसमें।
16: नाम क्या है आपका?
15: जी सफरोज अली बोल रहे हैं।
16: अच्छा, तो आपका तो मैसेज शामिल किए थे, करते हैं?
15: नहीं मेरा शामिल नहीं हुआ था उस शो में।
16: पक्का आप सुने थे?
15: जी मैम, हम सुनते हैं डेली, कोई भी शो मिस नहीं करता।
16: अच्छा ठीक है, आइए आज ऑनलाइन आ रहे हैं।
15: ठीक है, आज शामिल ही नहीं करती वो ना।

0: है ना, क्या नंबर है वो बॉयज का? 98 वाला।
1: हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे ही ना सकते हैं आप, तो मैसेज तो सबका शामिल किया जाता है।
0: मेरा नहीं हुआ था पिछले मंगलवार को, आप ही थी उस दिन, सोनी मैम तो नहीं थी।
1: आज आइए, आज कर देंगे।
0: ठीक है मैम, देखते हैं।
1: ओके,
0: फिर भी तो चलते चलते गाना सरवाइव कर दे।
1: बिल्कुल कर दीजिए।
0: गाने का बोल है सूरज हुआ मध्यम गाना है ना, नहीं तो एक और है, मतलब ये दोनों में कोई सुनाइएगा। कब तक अकेले, अलके यज्ञ का आवाज है।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: कब तक अकेले है, ऐसा ही कुछ गाना है अभी माई चॉइस में। कब तक अकेले गाना का नाम है, अलके यज्ञ गाना है। सुनिए मैम, यही वाला गाना सुनाइएगा।
1: ओके
0: चलिए, तो और भी लोग
1: किसी को डेडिकेट है
0: जी मैम, आपको सुनी मैम को, सभी सुनने वालों को।
1: ओके चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91।
0: ओके मैम, बाय बाय
1: बाय।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: मैंने भाभी से बात करी। हेलो।
0: हाँ
1: मैडम, हमको गाना सुनना है।
0: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है
1: हमको। योर अनी के कोर से पूछा अपन लो, यही गाना सुनना है।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: अभी घर के लोग को सुनाना है, मेरे अपने भाभी को, अपने भतीजी को सुनाना है।
0: अच्छा जी, और वैसे आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम सुमन कुमारी है। साकिर इंदरवा के लगे उसी समय से आपको कॉल करते करते बीजी बीजी बीजी बीजी लग गया।
0: अच्छा जी।
1: कब गाना सुनाएंगे मैडम?
0: सुन लीजिएगा, ये वैसे भी आज शाम को ये सॉन्ग बजने वाला है। 5 बजे फर्स्ट ही कॉल बजेगा।
1: सुनिए ना मैडम, और एक बार में हम लोग कॉल किए हैं तो 2 गानों के रिकॉर्ड नहीं किए हैं।
0: एक दिन में 2 सॉन्ग।
1: हाँ,
0: एक कॉल के लिए बस एक गाना।
1: अच्छा, मतलब एक कॉल के एक गाना। चलिए ठीक है, और सब ठीक है ना मैडम?
0: हाँ। और
1: सुनिए ना, आप शादीशुदा है?
0: नहीं।
1: अच्छा ठीक ही है।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
11: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो,
17: नमस्कार भारती जी।
16: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
17: धर्मेंद्र तिवाली बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
16: जी, क्या हाल चाल है?
17: बढ़िया। सोनी जी आजकल नहीं आ रहे हैं ना?
16: आती हैं तो योर वॉइस योर चॉइस का वही ना शो करती हैं।
17: बहुत दिन हो गया बात करके, 4-4 हफ्ता हो गया हम।
16: अच्छा, अभी तो फिलहाल ये वाला मतलब शो है जो हम ही चला रहे हैं
17: ना। ठीक है, अभी थोड़ा आ रहे हैं, आप लाइन में आ रहे हैं। अब बोलने का बढ़ रहा है।
16: कोशिश कर रहे हैं।
17: ना ना, बढ़िया अनुभव हो गया है। प्रोग्राम सुनते हैं ना पूरा दिन, अनुभव आपका अच्छा हो रहा है। और सब ठीक है ना?
16: हाँ हाँ, सब ठीक है।
17: बारिश हो रही हो रहा है कि नहीं?
16: नहीं, बारिश तो नहीं हुआ है और गर्मी भी तो बढ़ गया है।
17: गर्मी को तो पूछिए मत, सावन का महीना चालू होने वाला लग रहा है कि साला मई अप्रैल का महीना। इतना गर्मी, हम लोग का काम करना पड़ता है खुले में पूरा।
16: उधर बारिश हुआ और इधर अब रुक गया है।
17: हम लोग तरफ में थोड़ा भी पानी नहीं हुआ शुरू से लेकर अभी तक। अब देखिए अगस्त में हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी तो इधर गुजरात महाराष्ट्र का हालत बहुत खराब है। बहुत ज्यादा तकलीफ में है आदमी, दिखा रहा था न्यूज में पूरा रूम में पानी भर गया था।
16: उधर तो है, कहीं तो बाढ़ ही आ गया और कहीं सूखा ही पड़ गया है।
17: इधर आपके गोपालगंज को उधर बियर पड़ता है ना, उधर भी बाढ़ आ गया। ये बोलबम का सॉन्ग सुनवा दीजिए।
16: गाने की बोल बता दीजिए।
17: पवन सिंह की आवाज में?
16: अच्छा, कोई भी पवन सिंह की आवाज में।
17: हाँ, बढ़िया। थोड़ा बोलबम का सॉन्ग सुनवा दीजिए, मिजाज थोड़ा मर जाएगा।
16: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
17: अपना वरुण पांडे है, रंजीत है, सुनील है, यही तो नहीं करा रहे।
16: ओके, चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
17: नमस्कार।
16: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: हम बोल रहा हूँ निखिल कुमार, बहुत अच्छा प्रज लगता
1: जी। कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना मेरे को सुनना है, गाना हमको सुना दीजिए। तुम्हारा प्यार में सॉरी कमजोर तो हर के उसका छोड़ देना।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: आपको डेडिकेट है, सबको जितना रिमझिम के बानी टीम सबको डेडिकेट बा। मेरे कॉल करते हैं पहले तो बिजी बता रहे थे, हम बोलते ब्लॉक हो गई थी उससे हम लोग ना ही जुड़ सके हैं।
1: नहीं नहीं, से नहीं बिजी बताता है, बिजी इसलिए बताता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज से आते रहते हैं लगातार।
0: अच्छा, चलिए मैम गाना डेडिकेट सुना दे।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: आ सकती है ना?
1: हाँ हाँ, और सब ठीक है।
0: तो गाना नहीं बज सकता है, एक लिसनर को एक ही बजते हैं।
1: हाँ, एक लिसनर का एक ही सॉन्ग।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सभी बीएड कॉलेजों में खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। अंतिम दिन भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 30 जुलाई को होगा मतदान। और मानसून की सक्रियता फिर बढ़ी। पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर आखिरकार चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में परीक्षा पेपर लीक रोकने और परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में दोषियों को 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने

0: और वास्तविक सुधार लाने का इरादा न रखने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा है कि यह नया विधेयक महज दिखावा है, क्योंकि यह पहले के अधिनियम में केवल एक संशोधन है। इससे पहले विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में भोजन अवकाश के पहले की कार्यवाही बाधित रही। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश भी दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। इनमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। इधर राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। ताजा जानकारी के अनुसार इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित व्यक्तियों को रिहा करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में कहा कि यह देश के किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान चरण में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। श्री चौहान ने बताया कि अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, जबकि पहले मनरेगा में 100 दिन का ही रोजगार मिलता था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। श्री चौधरी ने मुंगेर में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी।
1: अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है, सरस्वती विद्या निकेतन बन रहा है, 551 जगह पर इसकी शुरुआत हुई, आज लगभग 10 जगह पर मैंने फिर आज शुरुआत किया है, ये बढ़कर 561 हो गया, इसको रोज बढ़ाऊंगा।
0: मुख्यमंत्री ने मुंगेर में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने जिले के तारापुर और असरगंज में मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और थाना भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक ऐप की भी शुरुआत की है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटना और सोनपुर तथा सुल्तानगंज और अगवानी घाट को रोपवे से जोड़ा जाएगा।
1: हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और दो जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मेरिन ड्राइव है, वहाँ का जो हरिहर नाथ मंदिर है वहाँ ले जाने का काम करेंगे, और अजगैबी नाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर रोड शो और सभाएं की। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लोगों से संपर्क कर एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट की अपील की। जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भी प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न मोहल्लों और टोलों में लोगों के साथ संवाद कर समर्थन मांगा। 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: जितने भी सभा, रैली या जुलूस होती उस पे जो है रोक रहेगी। 48 घंटे पूर्व से लाउड स्पीकर के प्रयोग पे भी जो है कंप्लीट बैन होता है। सभी राजनीतिक प्रचारक, कार्यकर्ता जो उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें बाहर जाना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बतानी है, चूंकि यह साइलेंट पीरियड रहेगा, जो गाड़ियां पहले से दी गई हैं वो गाड़ियां अब साइलेंट पीरियड में जो है उसका उनको फिर से परमिशन लेना होगा इलेक्शन के दिन के लिए।
0: मॉनसून के सक्रिय होने से राजधानी पटना समेत विभिन्न भागों में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ भागों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 29 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह समेत राज्य की अधिकतर नदियों का जलस्तर घटा है। वहीं बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार ने कैंसर पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज के लिए बड़ी पहल करते हुए कैन किड्स संस्था के साथ समझौता किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे और कैन किड्स के संस्थापक पूनम बगई ने आज पटना में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कैन किड्स कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। कैन किड्स की संस्थापक पूनम बगई ने कहा कि समझौते के अनुसार राज्य में चाइल्डहुड कैंसर टास्क फोर्स का गठन, टेली कंसल्टेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
3: हमने आज एक MOU साइन किया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के साथ। उसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 100% बच्चे को पूरी तरह से आर्थिक सहयोग मिले और उस सब की वजह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो बोलते हैं वो होगा और फिर बच्चों की सर्वाइवल भी बढ़ेगा।
0: आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जिससे गंभीर यकृत रोग और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, जो लोगों और उनकी जान बचाने वाली सेवाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने का आह्वान है। अररिया जिले से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाके में हिंसा के बाद कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र मानिकपुर, कोसिकापुर और भवानीपुर में आज सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। रोहतास पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विप्लव कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज टीबी रोगियों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत डिजिटल सूचना संग्रह का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। यह कार्य डिजिटल मोड में मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जहानाबाद पुलिस ने हजारीबाग से पटना आ रही मिनी कंटेनर से 3 करोड़ रुपए का 280 किलो गांजा बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू। विधेयक में पेपर लीक जैसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। मुंगेर में कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने की तैयारी। और मानसून की सक्रियता बढ़ने से पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 62052612112 पे।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
7: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
6: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों को संविदा के आधार पर शोध सहयोगी के कुल 30 पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरेक्शन हेतु आमंत्रित कर रहा है। पद इस तरह से हैं: शोध सहयोगी ग्रेड 1 चिकित्सा, पदों की संख्या 12, शोध सहयोगी ग्रेड 1 गैर चिकित्सा, पदों की संख्या 4, शोध सहयोगी ग्रेड 1 IT, पदों की संख्या 2, शोध सहयोगी ग्रेड 2 वित्त और लेखा, पदों की संख्या 1, शोध सहयोगी ग्रेड 1 राजभाषा, पदों की संख्या 2, शोध सहयोगी ग्रेड 1 पदों की संख्या 1, शोध सहयोगी ग्रेड 1 संपदा, पदों की संख्या 1, शोध सहयोगी ग्रेड 1 यात्रा डेस्क, पदों की संख्या 1, इसके अतिरिक्त शोध सहयोगी ग्रेड 1 स्थापना के 2 पद, शोध सहयोगी ग्रेड 1 संपादकीय के भी 2 पद और शोध सहयोगी ग्रेड 2 साइबर सुरक्षा का 1 पद तथा शोध सहयोगी ग्रेड 1 सचिवालय का 1 पद भी रिक्त है। इस प्रकार कुल 30 पद रिक्त हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.natboard.edu।

0: in. इसके अतिरिक्त 25 से 31 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में स्कैन कोड के माध्यम से भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीजीटी गणित एक पद, टीजीटी हिंदी परामर्शदाता, प्रयोगशाला सहायक, पीटीआई सह मैट्रन महिला, नर्सिंग सिस्टर महिला, ये सब भी एक एक पद। आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट है ss.chittorgarh.edu.in। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में परामर्शदाता कीट विज्ञान का एक पद रिक्त है। संविदात्मक पद की अनिवार्य योग्यताओं, अन्य नियमों और शर्तों से संबंधित विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.ncvbdc.mohfw.gov.in। एशियाटिक सोसाइटी पार्क स्ट्रीट कोलकाता वित्त नियंत्रक के एक पद और लेखाकार समूह ख लिपिकीय के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ये दोनों ही पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए एशियाटिक सोसाइटी की वेबसाइट देखी जा सकती है जिसका पता है asiaticsociety.culture.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
8: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
12: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9939365923।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
6: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
7: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
9: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास। यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
16: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
15: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
16: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
15: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
15: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
16: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
21: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
22: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
23: ठक ठक।
24: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
25: अच्छा मिला ही नहीं।
24: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
26: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
24: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
26: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
27: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, विकास योजनाओं की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा, रहस्यमय ढंग से एक जिला परिषद के सदस्य लापता, दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, सरकारी विद्यालय में छात्रों का बेरहमी से पिटाई करता हुआ वीडियो वायरल, अभियोजन तथा न्यायालय के कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन, महादलित सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन, कब्रिस्तान घेराबंदी तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें तथा जिन परियोजनाओं में भूमि विवाद, अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण कार्य प्रभावित है उसका त्वरित समाधान कर कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों, सांसद एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के स्वीकृति एवं प्रगति पर चल रही परियोजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्र भवनों, महादलित सामुदायिक भवनों और कब्रिस्तान घेराबंदी इत्यादि पर भी बिंदुवार तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला परिषद सदस्य एक रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं, जिसको लेकर परिजनों में भय व्याप्त हो गया है। परिजन अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 के सदस्य रतिकांत शर्मा 23 जुलाई के शाम को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों के अनुसार वे बाइक से घर से निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने बरौली थाने में आवेदन देकर अनहोनी की आशंका जताई है। अब बरौली थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में NH 90 पर बीती रात एक भीषण हादसा हो गया। दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में खौफनाक हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस भीषण हादसे में खाली ट्रक के परखचे उड़ गए और वह मकान में घुस गई। दूसरी गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज हो गई। बताया जा रहा है कि बालू लदा हुआ एक भारी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह के मकान में जा घुसा। आधी रात को मकान में ट्रक घुसने से इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे में 37 वर्षीय अमरेश कुमार तिवारी की जान चली गई। मृतक पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिले के साढ़ी थाना क्षेत्र के नोनी पापड़ गाँव के स्वर्गीय होशिला तिवारी के पुत्र बताए जा रहे हैं। हादसे की दुखद खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों के मदद से किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया और आगे अब मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थावे प्रखंड के प्यारेपुर विद्यालय में एक रिटायर्ड शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में घुसकर बच्चों की डंडे से बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद छात्रों में भारी दहशत है, तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले पर फिलहाल कोई बयान देने से बच रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति विद्यालय में घुसकर कक्षा में जाकर बच्चों को डंडे से बेरहमी से पीटते हुए दिख रहा है। बच्चे भी उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाते हुए और खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चों की यह पिटाई क्यों हो रही है, इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार जो आरोपी शिक्षक हैं उनका चंदेश्वर दुबे नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पदाधिकारी इस मामले में आवश्यक जाँच पड़ताल करने में लगे हुए है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व और न्यायालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित तमाम पदाधिकारीगण, DCLR इत्यादि मौजूद रहे। इसमें कार्यों के साथ साथ भूमि सुधार, उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता के न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को भी राजस्व मामलों के समयबद्ध निष्पादन, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू विवाद, अतिक्रमण निष्पादन तथा अन्य लंबित प्रकरणों में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की भी समीक्षा की। इसमें आपराधिक मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने का उन्होंने निर्देश दिया। बैठक के दौरान हेरियस क्राइम पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट से संबंधित वादों की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, समय पर आरोप पत्र, साक्ष्य एवं गवाहों की उपलब्धता तथा न्यायालय में मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष बल दिया। आज पुलिस लाइन डे के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस लाइन में पहुंचकर पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का भी संचालन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्या और उनके मांगों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। पोचका गांव थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के एक मामले में प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया प्राथमिकी आरोपी इमरान अहमद है, जो झीरवा गांव के शमशाद अहमद का पुत्र है। पोचका गांव पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोरे थाना क्षेत्र में भी दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भीषण टक्कर में तीन लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया और दो लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बरौली के रतन सराय पुल के पास भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार स्वर्ण व्यवसायी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यवसायी सीवान से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मृतक बरौली नगर वार्ड संख्या 12 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों के आंदोलन के बाद उपद्रव, तोड़फोड़, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर कथित हमले के मामलों में दर्ज मुकदमों को बिहार सरकार ने वापस लेने के लिए निर्देश जारी किया है। इसको लेकर अब बुद्धिजीवी वर्ग ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार के इस निर्णय को जहां सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक संवेदनशीलता और आंदोलनकारियों के हित में बताया, तो वहीं दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले लोग इसे कानून व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत मान रहे हैं। दरअसल छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। कई स्थानों पर प्रदर्शन उग्र होने, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तथा पुलिस प्रशासन के साथ टकराव की खबरें आईं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी बीच विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से सरकार पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा और सरकार ने बिना शर्त मुकदमे वापस लेने के फैसले जारी किए हैं। इसको लेकर बहस तेज हो गई है। क्या यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है या इसे कानून के शासन पर सवाल भी खड़े होंगे? लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार से असहमति जताना, अपनी आवाज उठाना और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करना भी लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। और सवाल यही है कि क्या मुकदमे वापस लेकर सरकार ने लोकतांत्रिक संवेदनशीलता दिखाई है या इस फैसले से कानून तोड़ने वालों का मनोबल बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले समय में सरकार की कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी एडीपी योजना एवं राष्ट्रीय बायोश्री योजना का सफल आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र में किया है। इससे हजारों लाभार्थियों को सहायक उपकरण और आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुई है। इस जन कल्याणकारी पहल के लिए सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भारत सरकार के मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सांसद ने अपने अनुरोध में कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही उनके जन प्रतिनिधि होने का मूल उद्देश्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इस अनुरोध का सकारात्मक विचार करेगी और शीघ्र ही पुनः शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनता का कहना है कि सांसद सदैव अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हैं और प्रत्येक वर्ग, गरीब, किसान, युवा, महिला, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विकास योजनाओं की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। रहस्यमय ढंग से एक जिला परिषद के सदस्य लापता। दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। सरकारी विद्यालय में छात्रों का बेरहमी से पिटाई करता हुआ वीडियो वायरल। अभियोजन तथा न्यायालय के कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
23: तो रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
28: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
23: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
28: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
23: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
28: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
29: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
23: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:21 हो रहा है हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें आप तो पुराने गाने का फरमाइश करें, क्योंकि ये कार्यक्रम पुराने गाने के लिए ही है। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। फिलहाल मेरे पास पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है पीले पीले ओ मेरे राजा, सुनना है आपको, सुनाना है आपको और सभी दोस्तों को। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी, तो चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, माय नेम इज़ दीपक एंजेलर जी। तो चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपसे पिछले सप्ताह कहे थे कि अब तो छोड़ दीजिए, जो दर्द मिला उसे सहने की क्षमता बढ़ाएं और अपने कार्य में लगे रहें। तो फिलहाल आपके गाने हैं तो पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय नमस्ते सर, क्या हाल है, मैं भी शामिल हो गई हूं। और इस मैसेज को करती हैं खुशी उपाध्याय पसरमा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में बहुत दिन बाद। आगे मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि हाय, तो अपना आगे का भी मैसेज सेंड करें ताकि आपकी पहचान हो और पहचान के साथ साथ गाने की भी फरमाइश होती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पीले पीले ओ मेरे राजा।

कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए बिल्कुल आपकी सॉन्ग सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्लीज़। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन आप कौन? और पीछे के मैसेजों से ज्ञात होता है सोनी सरेवार नंबर एक गोपालगंज से जुड़ी हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश विलेज सब्जा फील्ड गोपालगंज से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए सर जी। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अपने दिल का दर्द उसे बताना चाहता हूँ, उसे कितना चाहता हूँ, उसे महसूस कराना चाहता हूँ, कितना रोया हूँ उसे पाने के लिए, उसकी गोद में सर रख कर उसे बताना चाहता हूँ। सोनू भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको। तो चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए, दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर, मैं भी आ चुकी हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, निशा पांडे। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के नाम बताया जाता है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, दीपक एंड ज्वेलर जी की फरमाइश।

ट्रेडरियम जीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और गाने की फरमाइश करने वाले दीपक एंजेलर जी, शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया अभी इनका दर्द गया नहीं, तो अब तो ख़त्म कर ले भाई। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू जी, मैं रेखा पांडे गोपालगंज सरिया वार्ड नंबर 5 से, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल प्ले करने की कोशिश रहेगा, फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा, गुड इवनिंग सर, हम भी जुड़ गए हैं आपसे, और मैं मंकेश साहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हमें लगता है कि आपके गाने तो हम शायद सुनाए हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं सोनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि दिलीप राम भाई का पसंद काफ़ी लाजवाब था। मैसेज करते हैं तेजपुर आसाम से सगीर अंसारी जी, बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स भैया जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और अपना परिचय दे। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज तो आते जा रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा, हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी जुड़ चुकी हूँ आपके शो से, रोशनी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा, नाजिया परवीन, एड्रेस गोपालगंज जंगलिया, सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग नेम आकाश, किसी दीवाने को हमसे मोहब्बत हो जाए। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने को प्ले करते हैं, और इस गाने के फरमाइश करती हैं खुशी पसरमा से, और गाने का बोल, कितने दिनों के बाद मिले हो, कैसे बताएं तुम्हें सनम।

रेडियो रेमसीम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और बिल्कुल यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल पूछिए, पूछना जरूरी है। मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अब मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। चलिए आपकी सॉन्ग सुनाते हैं, और इस मैसेज को पहुंचाती हैं सोनी सरे, वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से, और गाने का बोल दिया गया है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे, आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर ले। आगे मैसेज पहुँचा, हेलो सुनो भैया का हाल बा। शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हैं और कहते हैं कि आज तो मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल खुशी से रहेगा, फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल कभी दोबारा नहीं मिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों, मगर दिल से चाहने वाले बार बार नहीं मिलता। सोनू भाई नमस्कार, क्या हालचाल है, सब गाना मस्त है ना। और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि नाइस सॉन्ग। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और तो हम तो कोशिश करते हैं कि सबकी फरमाइश एक एक करके पूरी करें। इसमें कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी सुना दीजिए। जल्दी तो कैसे करें, एक एक करके ही तो सुना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय हो रहे हैं 9:56। आगे बढ़ेंगे, आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए। मैसेज को शामिल करने से पहले हम आज फिर से आप सभी के बीच एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। और आज हम सभी जानेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक संक्रामक परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में बरसात के मौसम में मलेरिया के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। कारण यह है कि संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्य संपर्क से नहीं फैलता है, यह केवल मच्छरों के काटने से ही फैलता है। मलेरिया के प्रकार हैं, मुख्य दो प्रकार होते हैं, जो एक है प्लाज्मोडियम विवैक्स, अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं लेकिन दोबारा हो सकता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और यह रोग अधिक गंभीर और जानलेवा हो सकता है। इनके लक्षण है मच्छर के काटने के सात से 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तेज बुखार, ठंड लगना और कंपकपी, अधिक पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों और शरीर में कुछ दर्द और कमजोरी और थकान महसूस करना, बतली जैसी उल्टी आना और भूख कम लगना। कुछ मरीजों में पीलिया या बेहोशी भी हो सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं। इनकी जांच है रक्त की स्लाइड और रैपिड मलेरिया टेस्ट, CBC तथा अन्य आवश्यक जांच भी स्वास्थ्य कर्मी करा सकते हैं, जैसे डॉक्टर। वो अपने आवश्यकता अनुसार, सूझबूझ के अनुसार जांच करा सकते हैं। उपचार है, मलेरिया का उपचार डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटी मलेरियल दवाएं पूरी अवधि तक ले, पर्याप्त आराम करें, खूब पानी, ORS, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ ले। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल ले और दवा का कोर्स 20 में ना छोड़े। जितना कोर्स आप को डॉक्टर बताए पूरा करें। इनके बचाव हो सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी की टंकियों और कूलर की नियमित सफाई करें, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। संभावित जटिलताएं यह हो सकती हैं कि यदि समय पर इलाज ना मिले तो गंभीर मलेरिया हो सकता है, जिससे मानसिक पर प्रभाव पड़ सकता है। गंभीर एनीमिया, किडनी फेल होना, सांस लेने में कठिनाई, बेहोशी, मृत्यु तक हो सकती है। तो यदि आप सभी को ऐसी कोई लक्षण या ऐसी गतिविधियां आपके परिवार में या आपको या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को हो तो उसको बताएं और या उसको जानकारी दें कि ऐसे परिस्थिति में आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आप जाएं सरकारी अस्पताल में, इसका इलाज उपलब्ध है, या किसी भी संस्था में जाएं, इसका इलाज जरूर कराएं, इससे नज़रअंदाज ना करें। यदि हम ऐसे परिस्थिति को अपने आप को समझते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी सुझाव देकर स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी जानकारी हर रोज आप सभी के बीच साझा की जाएगी रेडियो रिमझिम पे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आप सब इसका उपयोग करें। फिलहाल हमारे पास मैसेज पहुंच रहे हैं तो मैसेज को शामिल करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे जो भी मैसेज हैं उस मैसेज को शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि गाना का बोल है, दिल ने ये कहा है दिल से, प्लीज़ सर बजा दीजिए। तो बिल्कुल बजाने की कोशिश है और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, बिल्कुल सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग और इस
मैसेज को पहुंचाया गया है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल हंसी है जवां है। गाने के उपरांत मैसेज करती हैं रोशनी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थोड़ा तेज वॉल्यूम में, तो बिल्कुल जितना हमें लगता है उतना वॉल्यूम में साथ देते हैं। और आगे मैसेज करते हैं राजू कुमार मधु सरिया से और कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे नंदनी यादव थावे से की हैं और गाने का बोल देती हैं धीरे धीरे पास आ रही, तो चलिए आपकी फरमाइश सुनते हैं हम सभी रेडियो एम छम 90.4 FM पे।

हवे प्यारा संग रेडियो रामजीम 94.4 FM पे संडे है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं शगीर अंसारी जी तेजपुर शाम से। और गाने का बोल देते हैं, नसीब होगा मेरा मेहरबान कभी ना कभी। ओल्ड इज गोल्ड गाने की फरमाइश किए हुए हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और शगीर अंसारी जी आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रामजीम 94.4 FM पे।

रेडियो MCM 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे बढ़ देंगे, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा। और गाने का बोल दिया गया है, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। और इस गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागण हैं निरंजन जी बतरदे से जुड़े हुए, काफ़ी प्यारा सॉन्ग। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MCM 94 FM पे।

0: Subscribe now and press the
1: रेडियो 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो चुका है और कुछ आगे निकल रहे हैं, तो चलिए कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंतिम गाने प्ले करते हैं निशा पांडे की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है, अभी मैसेज पहुँचा है नाइश गाना और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है दिल ने ये कहा है दिल से, प्लीज़ सर बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने बजाते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज़ नहीं होना है। हमारा समय पूरा होने के बाद से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दें, यहाँ तक कि जाते वक्त एक गाने हम छोड़ जाते हैं। तो फिलहाल कल मिलते हैं एक दूसरे से हम सभी, तो अगले गाने के साथ इंजॉय करें और हम भी आप सभी के साथ हैं गाने तक। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो?

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ऑलराइट।

0: अक्षरों में करियर है।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हाँ हो।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा

0: कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग
2: जी, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: जी, बोल रहे थे गाना सुनना है मैम।
1: जी, कौन सा गाना सुनना है?
2: वो एक है ना, ओढ़नी के कोर से तू पूछा अपन लोर गावे आई वे गोड़ी।
1: सर, गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी सुनाना है।
1: बता दीजिए।
2: जी मेरे भाई लोग का है और यहाँ पे जितने वर्कर सर है उन सबको और जितने रिमझिम में है उन सब लोगों को।
1: ओके, तो चलिए मैं आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
2: ठीक है मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। नाश्ता तो हो गया?
0: हाँ, मेरा तो नाश्ता हो गया है। आपका हो गया?
1: सनी मैम बोल रही है।
0: नहीं, आरती बोल रहे हैं। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: ये बंधन दिलों के बंधन है।
0: और गाना किसी को डेडिकेट है?
1: आप रेडियो रिमझिम सुने वाले अपने साथ।
0: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: कैसे हैं?
6: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
5: ठीक है। भाई आज लेट हो गया।
6: रिचार्ज नहीं था ना, इसीलिए।
5: रिचार्ज नहीं था कि बारिश में आने में लेट हो गई?
6: नहीं नहीं, मुझे आने में लेट नहीं हुआ, रिचार्ज नहीं था। सर से बोल के अभी रिचार्ज कराए।
5: हाँ हाँ, अभी बोल रहा था इनकमिंग।
6: हाँ हाँ, सब ठीक।
5: गाना एगो सुने दो।
6: अभी कौन सा गाना सुने?
5: आज सिल्की राज के गाना है, केस कदम किया मान हानि के।
6: हाँ है।
5: तो वही आज रात
6: और सॉन्ग के ऊपर सुन सुबह।
5: अच्छा,
6: तो गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: ठीक है।

0: प्रणाम सर।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
0: जी, हम बथुआ रोड कैमरा बाजार से बोले तनी। हेलो।
1: हाँ, कैसे हैं आप?
0: नया ब्यूटी पार्लर से।
1: अच्छा,
0: हमारे वो गाना फरमाइशी बा, तनी बजा दे।
1: बता दी कौन सा गाना?
0: अभी ऐसे 15 अगस्त आवे वाला बा, राष्ट्रीय गाना बजा दे कर्मा फिल्म के, जौन हरिक्रम अपना करेंगे।
1: हाँ।
0: जी, और सब कहीं अपन समाचार?
1: हमारे तो ठीक बाबे। और गाना क्योंकि डेडिकेट भी बा,
0: और रेडियो रंजन सभी सभी लोगों के लिए।
1: अच्छा,
0: अपने अपने सेमरा बाजार के सभी आई लोग है।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 एफएम।
0: जी सर।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone game bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी नमस्ते मैम।
4: नमस्ते,
5: गाना सुना है?
4: जी बता दीजिए कौन सा
5: गाना।
4: हेलो
5: हेलो।
4: हाँ,
5: खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती है गाना, नहीं है क्या किसी को? यही गाना सुना है।
4: और गाना किसी को डेडिकेट है?
5: और गाना रेडियो रिमझिम सुनने वाले के लिस्नर हो और आपको भी। मेरा नाम निरंजन कुमार है।
4: हाँ।
5: आपका नाम है?
4: आरती
5: खाली।
4: हाँ
5: जी, ठीक है। और समाचार?
4: समाचार सब ठीक है, आप अपना बताइए।
5: मेरा भी ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया है।
4: अच्छा, धूप लग गया है क्या?
5: हाँ, धूप में गन्ना का जूस पी लिए थे उसके बाद।
4: अच्छा,
5: इसलिए लग रहा है।
4: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ झिंतापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आपका आवाज आज लग रहा है कि सोनी जैसा लग रहा है, सोनी मैडम जैसा।
1: अच्छा
0: हाँ
1: सोनी मैम, तो योर वॉइस योर चॉइस का शो कर रही है ना?
0: आवाज आपका आज वही लग रहा है सोनी जैसा, सोनी मैम जैसा। आज आवाज आपका पहचान लिया।
1: लेकिन हम तो भारतीय है ना। हाँ
0: और बताइए मैडम, बारिश हो रही हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है।
0: अच्छा धूप निकल रहा है।
1: हल्का हल्का धूप निकल रहा है।
0: आज हम लोग का गाना सुनवाइएगा खेसारी लाल को बोलबम का वाला गाना है, रोड में कंवरियन के भीड़ लगल बा हमें चलिए दिया ड्राइवर हो।
1: अच्छा
0: यही वाला, अभी सावन का चल रहा है ना, इसलिए हम लोग सोचे की आज बोलबम का गाना फरमाइश करें।
1: बिल्कुल चलिए फिर, गाना किसी को डेडिकेट है?
0: गाना तो डेडिकेट मेरे गुरुदेव भाई है और मेरे अंकल जी है, ललन अंकल जी सिवान जिला का। और सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ना, यही तो गलती हो गया मेरे।
1: अरे नहीं ऐसा नहीं है, किसी को डेडिकेट कीजिए, सुनना ही है। वैसे तो मैं सुन ही लेती हूँ।
0: अच्छा जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं श्रोताओं, सबको श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे लड़की है, वो भी सब ये गाना का फरमाइश है।
1: चलिए तब तो और बढ़िया है।
0: मेरी लड़की बोली कि नहीं पापा आज गाना वही खेसारी लाल का फरमाइश कीजिएगा, फोन करके बोली थी। हम बोले कि नंबर दे देते हैं बेटा, बात कर लेना। और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हेलो आप सब बताइए, आप सब ठीक है ना?
0: हाँ बढ़िया है जी, आप लोग का आशीर्वाद चल रहा है। बस हम लोग गए थे, ये फोन करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे बस,
1: और हम सब आप सबकी फरमाइश को पूरा करते रहेंगे।
0: फरमाइश क्या चीज का?
1: गाने की फरमाइश को पूरा ऐसे ही करते रहेंगे,
0: ऐसे ही पूरा करते रहेंगे गाने का फरमाइश। जैसे हम लोग गाना फरमाइश करते हैं तो रेडियो स्टेशन में भी बजता है?
1: हाँ बजता है यहाँ भी।
0: अच्छा, और उसी को बजाया जाता है वो रेडियो, जो जितना सुनने वाला है वो रेडियो सुनता है?
1: रेडियो पे जब बजता है तो यहाँ भी रेडियो रखा हुआ है, हम लोग भी सुनते हैं और सारे लिसनर वो तो अपना सुनते ही होंगे।
0: अच्छा रेडियो स्टेशन में रखा हुआ है?
1: हाँ,
0: बजता है। अच्छा
1: अभी सोनी जी का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी बज रहा है वो भी।
0: सोनी जी का वो कौन सा है उसमें फरमाइश?
1: योर वॉइस योर चॉइस का। हाँ
0: हेलो माई चॉइस का,
1: ये तो हेलो माई चॉइस है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो योर वॉइस योर चॉइस है।
0: आप खाली रिकॉर्डिंग करते हैं और एक मोनार्मा जी है वो?
1: हाँ
0: चलिए ठीक है मैडम, ठीक है
1: ओके। फिर गाना आपका प्ले
0: कर,
1: सुनते रहिए सब रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो रिमझिम रेडियो गोपालगंज जी।
6: हाँ जी
5: सोनी बेटा, सत श्री अकाल भाई।
6: सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: धन्यवाद भाई। मैं भाई पिंड मौड़कोर डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मठू बोलता बेटा।
6: ओके, और कौन सा गाना सुनना है आपको
5: बेटा? एक पुरानी फिल्म है, देश प्रेमी फिल्म है भाई
6: जी। गाना है कौन सा है बता दीजिए।
5: बताना बेटा, गुनगुना कर बताऊं?
6: गुनगुना दीजिए।
5: हाँ सुनाना बेटा, हैगा भाई फिल्म, हैगा भाई गीत है, मेरे याद आगे भूल गया सी। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, ये गीत है भाई।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: हाँ बेटा, मेरे मान योग बड़े भाई है जी देवेंद्र सिंह तग्गड़ साहब, अमरजीत सिंह बाला साहब प्रिंसी रिटायर हो भाई, सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो ये डॉक्टर रिटायर हो भाई, मलकीत सिंह घड़ी साज, भाई स्वामी धर्मपाल जी, परमजीत सिंह बाघा पुराना बेटा। आपको सत श्री अकाल बुलाऊंगे।
6: सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल किए।
5: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल।
3: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: नमस्ते पार्थिया मैडम
1: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मैं एक गाना की फरमाइश करना चाहता हूँ।
1: बता दीजिए।
0: गाना मुझे चाहिए है कितनी बेचैन हो के तुमसे मिला। फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम आपको पता होगा।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: भारतीय मैडम ये गाना आपको डेडिकेट करना है।
1: अच्छा, नाम वैसे क्या था आपका?
0: मेरा नाम है मोहम्मद वकार, स्कॉटलैंड ग्लासगो से बोल रहा हूँ। और भारतीय मैडम मौसम कैसा है इंडिया में?
1: मौसम इंडिया का अभी तो गर्मी पड़ रही है और धूप भी तेज ही निकल रहा है।
0: ठीक है, इधर स्कॉटलैंड में भी अच्छा मौसम है, इधर धूप निकली है।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया।
0: हाँ जी, इधर मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो आपको इंडिया में मजा आता होगा?
1: इंडिया में बहुत मजा आता है।
0: अच्छी बात है, तो आपको इंडिया बहुत पसंद है?
1: मुझे तो बहुत पसंद है।
0: ठीक है, जाऊंगा इंडिया मुलाकात करने के लिए।
1: बिल्कुल स्वागत है आपका इंडिया।
0: ठीक है, भारतिया आऊंगा इंडिया, एक बार ट्राई करूंगा। वीजा लग जाएगा तो आ जाऊंगा, वीजा नहीं लगेगा तो नहीं आ।
1: गाना प्ले कर रहे हैं।
0: हाँ जी, तो गाना जरूर प्ले करना है, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ भारतिया मैडम। और मुझे माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपको अच्छा लगा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद मेरा गाना गाने के लिए। तो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो प्रिंसिपल में कॉल करने के लिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhvar aur shukrvar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 8029494911. Ji haan, 8029494911. To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में.
5: जी मैम नमस्ते.
4: नमस्ते,
5: कैसी हैं आप?
4: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ.
4: क्या हो रहा है अभी?
5: अभी तो कुछ नहीं, खाना खा रहा था, कॉल लगा रहा था.
4: अच्छा, चलिए भोजन हो गया?
5: नहीं अभी आधा हुआ, आधा बाकी है, तब तक फोन ही लग गया.
4: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा.
5: गाना कोई आप अपने पसंद से सुना दीजिएगा.
4: अच्छा, मेरी पसंद से सुनिएगा.
5: हाँ जी मैम.
4: सॉन्ग तो फिर डेडिकेट भी रहेगा.
5: हाँ, सभी रेडियो रंजीम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपको और अपनी पूरी टीम को.
4: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM.
5: जी मैम, थैंक यू,
4: वेलकम.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM
0: जी। रमजान
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: वो आज कौन सा गाना सुनने हैं?
0: आज सुनवा दीजिए, गद्दार मूवी है 130 का। उसमें गाना ये वाला है, तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी आपको, जितने श्रोता सभी को, हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग के साथ सुनेंगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। Now pick it up, pick it up.

0: Now pick your phone up.
1: Hello?
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello?
0: Now pick your phone up.
1: Hello?
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: जी मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते,
6: मैं ज्योति साहू मकसूदनगर से बोल रही हूँ।
5: कैसी हैं आप?
6: बढ़िया हूँ, आप कैसी हो?
5: मैं भी ठीक हूँ।
6: अब उस दिन मैंने फोन लगाया था मैडम, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आई, उस दिन गाना नहीं आया मेरा।
5: उस दिन नहीं आया लेकिन अगले दिन तो आया था।
6: नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया वो।
5: ऐसा तो नहीं, आपका गाना मतलब है तो बज गया है। शुक्रवार का आधा से अधिक कॉल बज गया, दो चार कॉल बचे हुए हैं, बस वहीं बजाना है।
6: हाँ मैडम जी, इसमें से मेरी भी नहीं आई थी।
5: अच्छा जी, तो देख लेते हैं इसमें है कि नहीं आपका।
6: ठीक है,
5: और सॉन्ग आज बता दीजिए कौन सा सुनना है।
6: आज कौन सा सॉन्ग पसंद है? मुझे वो पसंद है माइन माइन मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट?
6: अपने पति को और उनके कुछ दोस्त भी है, वो भी बोल लगा रहे हैं बहुत देर से लेकिन उनका लग नहीं रहा है अभी।
5: अच्छा जी।
6: हाँ उनका कॉल लग नहीं रहा है अभी, बोल रहे थे हमारा नहीं लगा है, आपका लगा है? नहीं मैंने, मेरा नहीं लगा अभी, तो बजा दीजिए मैडम ये वाला गाना हमारा।
5: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।
6: ठीक है मैडम जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या चल रहा है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है, ओके। साहिल लाल का गाना नहीं है, पुराना वाला बाबा धाम वाला
1: नया जो निकला है वो?
0: नहीं नहीं, नया वाला भी ठीक है, वो पुराना वो नहीं है, चल रहा है भीड़ लगाल बाबा वाला, वही गाना चाहिए।
1: चलिए फिर, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: ठीक है, सुरेश यादव है, रूबिया है, रूबिया उसकी माँ, यही लोग करवा दिया है।
1: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन पर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
6: जी क्या हालचाल है आपका?
5: आज दीदी दुकान पर बैठे हैं और आप रेडियो रंजन सुन रहे हैं।
6: अच्छा जी, तो आज कौन से गाने की फरमाइश?
5: जी मैडम जी, सिस्टर का नाम तो याद नहीं, गाने के बोल है काले लिबाज है, ऐसा लगे जैसे कोरा बदन निकल रहा है कोयले के कान से।
6: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: जी सबसे पहले आपको है, अपने गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा है, जीतन धाकड़ जी को, इनको सबको गाना डेडिकेट है ये।
6: जी चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक। नाश्ता हो गया आपका?
1: नाश्ता करके आते हैं।
0: आज सुनना है,
1: बता दीजिए कौन सा?
0: गलीनी आज चांदनी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको भी।
1: ओके,
0: आप कौन बात कर रही है? भारती मैम या सोनी?
1: भारती,
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए तब तो अच्छा है, ठीक है, आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा।
0: कब तक बच जाएगा ये सॉन्ग मैम?
1: आज नहीं तो कल बच जाएगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: कैसे हैं?
6: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बता दीजिए कौन सा?
7: यही गाना देखकर सारे गाने वाले को क्या है और याद कर।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
7: बिल्कुल सुनने वाले हैं सभी के लिए।
6: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो
1: जी,
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
1: क्या गुप्ता हिंदापुर,
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैडम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: अरे गर्मी से बहुत हालत खराब जो हो रहा है।
0: गर्मी तो बढ़ गया है,
1: धूप बहुत निकल रहा है, बहुत ही।
0: धूप भी वैसे ही निकल रहा है, गर्मी भी वैसे ही बढ़ा हुआ है।
1: ये ठंडी का मौसम सही रहता है मैडम?
0: हमको तो भाई ठंडी अच्छा लगता है।
1: ठंडी तो हमको भी अच्छा लगता है मैडम,
0: क्योंकि ठंडी में अपना स्वेटर पहनिए और निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
1: हीटर लगा करके बैठे रहिए एक दिन में ना।
0: हीटर है, आग है, सब तो है ही है और गर्मी के दिनों में तो पूरा हाल होता है।
1: और बताइए, ये सोनी सिस्टर कैसे हैं?
0: सोनी जी भी अच्छी हैं।
1: अच्छा, आजकल बात भी नहीं हो रहा। आज रितेश पांडे का गाना सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: कहाँ के लिए यही वाला मैडम गाना सुनना है, ठीक है?
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट हो,
0: ओके,
1: और उसके बाद जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सब।
0: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: ठीक है, ओके, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 80029994 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बेटा तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना हई। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: तर
1: अरे एक करे जा हम बरसी ना खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: ग्रेड ए पोल नहीं, पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से
2: हमेशा।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हाँ तो खाई ना मिली।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से। म्यूजिक।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

हरी बिहारिणी जो जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

वन बिहारी। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

0: एस मुस्तफापुर वैशाली
1: 9162154619।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आज विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की गुरु पूर्णिमा तिथि दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार के सुप्रभात रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:23 पे होगा और सूर्यास्त 6:37 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। आसान है सब कुछ याद करके उदास हो जाना, बहुत मुश्किल है सब याद रखकर मुस्कुराना। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: त्रिभुवन बिहारी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।